वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

मेरा कुछ नहीं। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

ए तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला के निश्चितो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे ये ही बनी रिया के सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने बंदी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू ठीक किया है तूने,

0: अरे चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट
2: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
3: टेस्ट
4: टेस्टिंग
5: टेस्ट
3: टेस्ट
6: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
12: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
13: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मान।
1: श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिता के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। उद्योगों को बड़ी राहत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देगा वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र। सड़क की सुरक्षा जाँच के बिना नहीं चल सकेंगे वाहन। किसानों को अगले 5 वर्ष भी मिलती रहेगी पीएम सम्मान निधि। आवारा पशुओं से हादसे में पीड़ित परिवार को 15 लाख मुआवजा देने का आदेश। समुद्र मंथन करेगा भारत, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए 84,000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलने वाले सहमति प्रमाण पत्र की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के पंजीकृत उद्योगों को वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता उद्योग की श्रेणी के अनुसार 5 से 25 वर्ष तक रहेगी। इस व्यवस्था को लागू करने वाला हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बन गया है। साथ ही तय समय में प्रमाण पत्र जारी न होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के करीब 12,500 पंजीकृत उद्योगों को अब बार बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC या सहमति प्रमाण पत्र लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का उद्देश्य स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित सड़क अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ऑडिट नीति 2026 लागू कर दी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब विभाग के अधिकार क्षेत्र में बनने वाली सभी प्रमुख सड़कों और परियोजनाओं का विभिन्न चरणों में अनिवार्य रोड सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। बिना सुरक्षा जांच के सड़क पर वाहन नहीं चल सकेंगे। सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से इसे लागू किया है। नई नीति के तहत सड़क परियोजनाओं का सुरक्षा ऑडिट योजना DPR निर्माण सड़क खोलने से पहले तथा मौजूदा सड़कों सहित 5 चरणों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति दी है। पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को पहले की तरह ही हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिलती रहेगी। इससे किसानों की खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, जोखिम कम होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने और आवारा पशुओं से संबंधित कानूनों को बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से ऐसी घटनाओं की रोकथाम और मुआवजे की व्यवस्था के लिए ठोस नीति बनाने को कहा है। दूरगामी प्रभाव वाला ये फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पंजाब के एक मामले में सुनाया। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण तेल गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के विशाल समुद्री क्षेत्र में तेल की तलाश करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी। इस योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत जलाशयों नहरों पर तैरती हुई सोलर परियोजनाओं का विकास होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम है। पथ परिवहन निगम के बस अड्डों और डिपो में इसी सप्ताह के हिम बस प्लस कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। निगम की ओर से इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन भी लोग कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग श्रेणियों में संचालित ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और सम्मान कार्ड को एकीकृत कर हिम बस प्लस कार्ड शुरू करने का निर्णय लिया है। ये नया कार्ड मात्र 365 रुपए के वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध रहेगा। इन कार्डों में 5 से लेकर 15% की रियायत की जाएगी। कार्ड बनाने के लिए निगम की ओर से 1 महीने का समय दिया जाएगा। तोबरी में आज शाहपुर के विधायक एवं मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में भतेला एवं कछलोट पंचायत से संबंधित विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भदल्ला एवं तोतारानी में भूस्खलन, गतरी सड़क पर विद्युत तारों और पेड़ों से जुड़ी समस्याएं,
जलगति बस्ती संपर्क मार्ग, तोतारानी में एम्बुलेंस सड़क निर्माण, पंचायत घर निर्माण, चांदमारी में भूस्खलन से हुए नुकसान, बरनेट में शमशान घाट निर्माण तथा डेंजर जोन में आए घरों की सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। केवल सिंह पठानिया ने बताया कि दियाड़ा की वर्षों पुरानी सड़क की मांग को पूरा करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। विद्युत व्यवस्था में सुधार किया गया है। उनका कहना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो डल लेक में शीघ्र ही आरती शुरू की जाएगी। डल लेक का अपना धार्मिक एवं पर्यटन महत्व है और यहाँ वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित के कार्यों को सेवा भाव और प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए तथा बरसात के मौसम में लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तय अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: अस्पताल के ICTC में। HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं, ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
6: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज। तू ही लाया इसे।

दोस्ती का रिश्ता खून का नहीं होता, फिर भी कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर निभाया जाता है। सच्चा दोस्त अक्सर वही होता है जो आपके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को बिना बताए पढ़ ले। वो आपके सब ठीक है कहने पर भी समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। दुनिया साथ तब देती है जब आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन एक दोस्त वो होता है जो तब हाथ पकड़ता है जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता। याद रखिए दोस्तों, दौलत से अमीर होना बड़ी बात नहीं, रिश्तों से अमीर होना सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा एक दोस्त है तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि हर किसी की किस्मत में ऐसा इंसान नहीं होता जो अपनी खुशी, अपना सामान, यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत भी बेच दे सिर्फ इसलिए कि आपके घर की मुस्कान बनी रहे। दोस्ती का असली मतलब यही है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तेरे चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो सलाम है ऐसे दोस्तों को जो एहसान नहीं जताते, बस हर मुश्किल में चुपचाप साथ खड़े मिलते हैं। ऐसे रिश्ते ऊपर वाला हर किसी को नसीब नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए आप सभी का अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अब हम अपने विचार और मनोरंजन जो है वो एक साथ एंजॉय करने वाले हैं जी दोस्तों। तो आज फिर से संडे का दिन, छुट्टी का दिन आ गया ना, समय का पता नहीं चल रहा है दोस्तों, बस भागता ही जा रहा है। तो आप भी इस समय के साथ खुद को एडजस्ट कीजिए और समय के साथ आगे की ओर बढ़ते जाइए। तो आइए दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में मनोरंजन की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से खूबसूरत से गीत के साथ। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ही खूबसूरत सा गीत।

सा ये गीत आप सभी ने इंजॉय किया। सिंग इज किंग मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत था और राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया। तो दोस्तों, और शुरुआत में ही दोस्ती की बात की है तो आप सभी जानते ही होंगे कि आखिर आज दोस्ती की बात क्यों की गई है। तो दोस्तों, आज 2 अगस्त 2026 का दिन है, तो एक तरफ आप आज फ्रेंडशिप डे भी मना रहे हैं और साथ ही सिस्टर्स डे भी मना रहे हैं। जी दोस्तों, तो रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती सबसे पहले हर रिश्ते में मायने रखती है। जहाँ दोस्ती होती है वहाँ हर रिश्ते को बहुत ही प्यार से निभाया जाता है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है, निभाना जिम्मेदारी होती है। तो इसी के साथ दोस्तों, मौसम की अपडेट की ओर चलते हैं। तो इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप सभी महसूस कर सकते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार अगर हम अपडेट की ओर जाएं तो दोस्तों, प्रदेश में एक बार फिर से मानसून की भारी वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान जारी करते हुए कई जिलों के लिए अलग अलग दिनों में येलो अलर्ट घोषित किया है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और चट्टाने गिरने का खतरा बढ़ गया है। तो ऐसे में हम कहीं भी जाते हैं तो बिल्कुल सावधानी और सतर्कता के साथ मौसम अपडेट कर चेक करके ही निकले, ताकि ना हमारी जान को नुकसान पहुंचे, ना हमारे साथ जुड़े रिश्तों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि दोस्तों दर्द दुख सभी को होता है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

0: तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, इंडियन बाबू फिल्म से लिया था और कुमार सानू की आवाज में आप सभी ने अपने अपने रेडियो सेट से इस बहुत ही प्यारे से मीठे से गीत के साथ अपनी सुबह के और भी मीठा बना लिया है। जी दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो आप सभी की बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन अब दिन की शुरुआत आप सभी प्यारी बनाने वाले हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो फिलहाल तो समय है दोस्तों कुछ खास जानकारियों का। 9:20 हो चुके हैं और अब समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को समाचारों की और उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपने इस बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से कार्यक्रम में।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान करेंगे शुरू। केंद्र ने कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में हिमाचल को 193 करोड़ 95 लाख रुपए की दूसरी किश्त जारी करने को दी मंजूरी।

0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चंबा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज होंगे शामिल। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से व्यापक वर्षा का समाचार, आज कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले के लिए वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: केंद्र सरकार द्वारा राहत कार्यों व संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को दूसरी किस्त के तहत 193,95,00,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 की SDRF की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। नड्डा ने परीक्षा के लिए किए गए व्यापक सुरक्षा प्रबंधों की भी समीक्षा की। पेश है ये रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 21 अगस्त से 3 सितंबर तक शिमला में आयोजित होगा। इस संबंध में कल विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। 27 अगस्त को निजी सदस्य कार्य दिवस तय किया गया है। 28 से 30 अगस्त तक विधानसभा में अवकाश रहेगा। पठानिया ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिवसीय चंबा दौरे पर हैं। अपने चंबा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री आज चंबा के चौगान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सरोल में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मेले की शोभा यात्रा में भाग लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वर्तमान मानसून के दौरान भारी वर्षा और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित शीतला पुल और सुल्तानपुर के राणा मोहल्ला क्षेत्र में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें इस आपदा से उबरने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक शादी हेतु वित्तीय सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को सलाह विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
3: योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह पर 51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन विवाह के निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित श्रम कार्यालय में जमा करना होगा। यह सहायता केवल उन श्रमिकों को दी जाती है जो बोर्ड में विधिवत पंजीकृत हो तथा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर निर्माण श्रमिक परिवारों पर विवाह के दौरान पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। आकाशवाणी के लिए मैं किन्नौर से सुमेश नेगी।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज ऊना जिले के हरोली बस अड्डा परिसर में हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय व ई बस डिपो का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यालय के बनने से क्षेत्र में परिवहन सेवाओं के संचालन व प्रबंधन को नई गति मिलेगी। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा हुई है। प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण 102 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 7 अगस्त तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर वर्षा होगी। विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में, जबकि कल ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, किन्नौर के शिप की लाश से 6 साल बाद भारत चीन के बीच व्यापार शुरू। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल को केंद्र सरकार से मिले 996 करोड़। जबकि पंजाब केसरी लिखता है, 7 आपदा प्रभावित राज्यों को SDRF की 2,117 करोड़ जारी करेगा केंद्र। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मॉनसून कमजोर पर नुकसान का आंकड़ा 720 करोड़ रुपए के पार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान करेंगे शुरू। केंद्र ने कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में हिमाचल को 193,95,00,000 रुपए की दूसरी किश्त जारी करने को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज होंगे शामिल। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से व्यापक वर्षा का समाचार। आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के लिए वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्वस्थ रहते हुए ही स्वास्थ्य बीमा लेना क्यों जरूरी है? तो आज इस पे भी हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि अक्सर हमें बहुत फायदेमंद रहती हैं। कई बार इन केस सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि कुछ समझ नहीं आता। तो कम उम्र में स्वास्थ्य बीमा लेने के बहुत सारे फायदे हैं, और साथ ही हम दोस्ती की भी बात करेंगे, और साथ ही हम सिस्टर डे भी मना रहे हैं तो उस पर भी हम नज़र दौड़ाएंगे, क्योंकि जहाँ रिश्ते हैं वहीं अपनापन है, वहीं प्यार है। जहाँ अपनापन प्यार नहीं है वहाँ रिश्ते भी नहीं हैं। तो आइए दोस्तों, बातचीत का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को लेकर चलते हैं कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारे से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

सो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कुछ खास बातों पे नजर दौड़ाते हैं। एक बात बताइए, जब हम नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसके लिए कवर भी लेते हैं, नई बाइक लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस भी करवाते हैं, बाइक हो चाहे कोई भी व्हीकल हो, लेकिन अपने शरीर का, अपनी सेहत का क्या हम उतना ही ध्यान रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अपनी सेहत की बात जब आती है तो हम अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे हिमाचल में अक्सर लोग कहते भी हैं कि अभी तो हम बिल्कुल ठीक हैं, बीमा की क्या जरूरत, सेहत को ध्यान में रखना क्या जरूरी है, अभी तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल सही हैं। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बीमारी या दुर्घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, वो बिना बताए हमारी जिंदगी में दस्तक देती है। जी दोस्तों, आजकल 25 से 30 साल की उम्र में भी लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याएं होने लगी हैं। ऐसे में अगर पहले से स्वास्थ्य बीमा हो तो इलाज की चिंता काफी कम हो जाती है। जी दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य बीमा की ही बात कर रहे हैं कि कम उम्र में जो है वो स्वास्थ्य बीमा क्यों लेना चाहिए और क्या इसके फायदे होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी लापरवाहियाँ, छोटी छोटी सी नज़रअंदाजियाँ कई बार हमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो फेस कराती है। तो ज़रूर हम बात करेंगे, ज़रूर जानेंगे, लेकिन आइए इसी के साथ

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के साथ ही बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत का रुख करते हैं जानकारियों की ओर। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में एग्रीस्टैक के अंतर्गत सभी किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे अनिवार्य किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवाने और फसल का डिजिटल सर्वे पूरा कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी कृषि योजना के लाभ से वंचित ना रहना पड़े। संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरी क्षेत्र राहुल कटोच ने बताया कि प्रदेश में रबी सीजन की फसलों का डिजिटल सर्वे सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जबकि अब खरीफ सीजन की फसलों का डिजिटल सर्वे तेजी से चल रहा है। उनका कहना है कि किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर के लोकमित्र केंद्रों में फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है। केवल यदि कोई किसान पंजीकरण का प्रिंट आउट लेना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रिंटिंग शुल्क देना होगा, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है और आप सभी को बता दें कि ये किसानों से अपील की है कि वे अपने पंजीकरण करवाते समय अपने साथ आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति तथा खसरा नंबर या जमाबंदी की प्रति अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि पंजीकरण के दौरान आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा और समय रहते फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा कर लेने से भविष्य में सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जी दोस्तों, तो ये खास करके जो है किसानों के लिए, किसानों से जुड़ी ये जानकारी है। तो आप सभी को बता दें कि जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी सुविधाएं, जो भी ये स्कीम्स चलती हैं, तो उसी के चलते फ्रॉड भी होना शुरू हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इस बात के लिए भी सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको फ़ोन आता है तो उस पर बिल्कुल विश्वास न करें, आप लोकमित्र केंद्र जाकर स्वयं जो है इस चीज़ को पूरा करें। जी दोस्तों, तो इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आज के इस बहुत ही प्यारे से शुरुआत के साथ, दिन की शुरुआत के साथ जी दोस्तों, तो जैसे कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, लेकिन वहीं हम बात कर रहे हैं रिश्तों की भी, क्योंकि रिश्तों का जोड़ जब होता है तो स्वास्थ्य भी अपने आप ठीक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ छोटी छोटी सी बातें, जैसे कि हम छोटी ही उम्र में स्वास्थ्य बीमा लेना क्यों जरूरी है वो बात कर रहे हैं, जरूर जाएंगे उस पे। लेकिन उससे पहले आज के दिन आप सभी मना रहे हैं फ्रेंडशिप डे भी। दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता बेहद खास होता है, सुख दुख में साथ देने वाला दोस्त, जिंदगी के अच्छे बुरे वक्त में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना सकते हैं, कितना भी मूड खराब क्यों ना हो उसे सही कर सकते हैं। यूं तो दोस्तों के साथ बिताया हर दिन हर पल बहुत स्पेशल होता है, इसी खास रिश्ते को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने दोस्तों को धन्यवाद कहते हैं, उन्हें खास महसूस कराते हैं, दोस्तों के साथ बिताए खूबसूरत पलों को सेलिब्रेट करते हैं। जी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और आखिर क्यों मनाया जाता है,

और समझना बेहद जरूरी है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और एक बहुत ही प्यारा सा गद्याली गीत आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। जी दोस्तों, एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, इस अंतराल से पहले आप सभी ने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सा गदियाली गीत धीरज शर्मा की आवाज में, मेला मिंजराना। जी दोस्तों, मिंजर मेला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला होता है ये, आप सभी जानते हैं बखूबी। देवभूमि हिमाचल में देवी देवताओं का वास कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं काफी अलग हैं। जी दोस्तों, यूं तो प्रदेश भर में बहुत से मेले, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन शिवभूमि चंबा का मिंजर मेला प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है। दुनिया भर से लोग इस दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने और पूरे सप्ताह उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। ये मेला भारतीय परंपराओं को बखूबी दर्शाता है। चंबा शहर राजा साहिल वर्मन द्वारा उनकी बेटी राजकुमारी चंपावती के कहने पर रावी नदी के किनारे बसाया गया था, इसीलिए इस शहर का नाम चंबा रखा गया था। जी दोस्तों, मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया। ये मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को शुरू होकर सप्ताह भर चलता है। इस बार ये मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त यानी कि आज तक मनाया जा रहा है। स्थानीय लोग मक्की और धान की वालियों का जो है वो मिंजर कहते हैं। इस मेले का आरंभ रघुवीर जी और लक्ष्मी नारायण भगवान को धान और मक्की से बना मिंजर या मंजरी और लाल कपड़े पर गोटा जड़े मिंजर के साथ 1 रुपया, नारियल और ऋतुफल भेंट किए जाते हैं। इस मिंजर को एक सप्ताह बाद रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है। मक्की की कोंपलों से प्रेरित चंबा के इस ऐतिहासिक उत्सव में मुस्लिम समुदाय के लोग कोंपलों की तर्ज पर रेशम के धागे और मोतियों से पिरोई गई मिंजर तैयार करते हैं, जिसे सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण और इसे रस्सियों से खींचकर चंबा के ऐतिहासिक चौगान तक लाया जाता है, जहां से मेले का आगाज होता है। तो है ना दोस्तों, कितनी खूबसूरत सी बात और कितनी खूबसूरत सी जो रहस्य होते हैं जो कि अक्सर हमें नहीं पता होते। तो यही जो है बहुत, मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी होती है जब हम किसी भी मेले को एंजॉय करते हैं तो उसके पीछे के इतिहास को जाने, तभी हम कह सकते हैं कि नहीं, वाकई में हम जो है ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अपने आसपास की जानकारियाँ बखूबी रख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ये बातचीत तो इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन इसी के साथ मनोरंजन जो है वो भी नहीं रुकना चाहिए। तो आइए एंजॉय करते हैं एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य बीमा की, कि आखिर छोटी सी उम्र में ही क्यों जरूरी है ये छोटे छोटे से स्टेप्स हमारी जिंदगी के लिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक ने 24 साल की उम्र में स्वास्थ्य बीमा लिया, दूसरे ने सोचा अभी क्या जल्दी है और 40 साल की उम्र में बीमा करवाया। अब सोचिए किसका प्रीमियम कम होगा। बिल्कुल सही, जिसने कम उम्र में बीमा लिया उसे कम प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी छोटी उम्र में लिया गया फैसला आगे चलकर बड़ी बचत बन जाता है। दूसरा फायदा दोस्तों, बीमा बीमारी आने के बाद नहीं लिया जाता, बीमा तो पहले लिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वही आपके काम आए। कई बीमारियों के लिए बीमा से वेटिंग पीरियड होता है, इसलिए जितना जल्दी पॉलिसी शुरू होगी उतना ही जल्दी उसका पूरा लाभ भी आपको मिलेगा। तीसरा फायदा, परिवार की सुरक्षा। जरा सोचिए अगर अचानक किसी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और लाखों रुपए का खर्च आ जाए तो परिवार पर कितना बोझ पड़ सकता है। और ऐसे समय में स्वास्थ्य बीमा सिर्फ पैसों की मदद नहीं करता बल्कि मानसिक तनाव भी कम करता है। जी दोस्तों, तो तनाव की हम बात करें वो तो हमें छोटी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा आ जाता है, तो जब सोचिए कि इनकेस अगर हमें हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़े तो तनाव कितना होगा, परिवार के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा कि कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, क्योंकि हर किसी के पास उतनी धन दौलत नहीं होती है, उतना पैसा नहीं होता है, वो किसी से उधार लेंगे, किसी से किस तरह से पता नहीं किस किस सिचुएशंस में वो अपने आप को संभालेंगे, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में ये छोटी छोटी सी बातें अगर हम ध्यान दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है और हर एक मुश्किल का सामना हम डट कर कर सकते हैं। आइए दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के साथ।

दोस्तों पहेली मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए दोस्तों इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों कांगड़ा धर्मशाला की बात करें तो खास करके कांगड़ा की हम बात करें, कांगड़ा या नगरोटा बगवा की हम बात करें, तो आज जो है कुछ दिनों से, मतलब कि बीते कुछ दिनों से, एक हफ्ते से मानकर चलिए कि बहुत ऐसी जो है न्यूज़ सामने आ रही हैं कि आज यहाँ चोरी हो गई, आज वहाँ चोरी हो गई, चोरों को पकड़ा इस तरह से। और कहते हैं ना दोस्तों कि जरा सी नज़र हटी कि दुर्घटना घटी, बस वही हाल है। 2020 बैच के युवा पुलिस अधिकारी आदर्श वरियाल ने बच्चों का पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में नशा तस्करी, चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उनका कहना है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे और इसके साथ ही साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। जी दोस्तों, कहते हैं ना कि छोटी सी लापरवाही हमारी बहुत बड़ी मुसीबत को जो है वो अंजाम दे देती है, तो ऐसे में इन्होंने ये अपील भी की है लोगों से कि ज़्यादातर हो सके तो आप घरों में सीसीटीवी कैमरे जो है वो ज़रूर लगवाएं ताकि चोरी का मामला हो चाहे कोई भी जो है घटना हो तो उसका पता जो है वो लगाया जा सके। तो चोरी की हम बात करें दोस्तों तो बहुत छोटी छोटी सी बातें, ज़रूर इस पे आएंगे इस बहुत ही खास जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले एंजॉय करते हैं एक प्यारा सा गीत, उसके बाद कुछ खास बातों पे नज़र दौड़ाते हैं।

तो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्यारे से गीत से पहले हम बात कर रहे थे जो धर्मशाला, खैर धर्मशाला में इतनी अभी बातें सामने आई नहीं है, लेकिन कांगड़ा और नगरोटा बगमा की हम बात करें तो हर दिन एक नई न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है, या एक ही दिन में दो दो जगह की न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है, चाहे वो मटोर की हो, चाहे वो मसल की हो, चाहे वो मतलब नगरोटा, मेन नगरोटा की हो, आसपास की हो, कहीं की भी हो, तो ऐसी ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आ रही है कि आज यहाँ चोरी हो गई है, आज यहाँ चोर पड़े। तो सबसे खास बात कि हम लोग इतना लापरवाह हो जाते हैं कई बार, माना कि हम कुछ सीक्रेट जगह में, अब सोचिए एक घर में टेडी के अंदर किसी ने जो है अपनी ज्वेलरी छुपा के रखी थी और चोरों ने वहां जाकर भी पता लगा लिया, तो सोचिए कितनी ये बारीक सी बात है। और कहते हैं ना, सुनने में ये भी बात आती है, लोग ये भी कहते हैं कि इतनी गहरी या इतनी एक कहते हैं ना वो मतलब संगीन सी बातें या इतनी सीक्रेटली बातें जो है वो घर के मेंबर को ही पता होती हैं ज़्यादातर, या तो हम महिलाओं में, लड़कियों में ज़्यादातर आदत होती है ये, मैं भी लड़की हूँ तभी मैं बोल रही हूँ ये सब, कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि नहीं भाई हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, वो कहते हैं ना कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती है ना बातें, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही वजह से अपने ही लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। हम हर एक बात जो यहाँ वहाँ फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बातें आगे आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ पहुँच जाती हैं हम भी नहीं जानते। और ये नशे की जो आग फैल रही है कहीं ना कहीं बच्चों में, युवाओं में, तो हो सकता है कि जो ये युवा हैं कई बार दोस्तों जब उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलती है तो वो चोरियां करना भी शुरू कर देते हैं, उसे इस हद तक क्रेविंग जो है वो लेकर चली जाती है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को हर एक जो है हरकत पे ध्यान रखें, हर एक चीज़ पे, क्योंकि कई बार घर से सामान जो है वो गायब होने लग जाते हैं, चीज़ें गायब होने लग जाती हैं, तो उसके पीछे का रीज़न हमें ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर क्यों और कैसे हो रहा है। बच्चा समझ के बातों को इग्नोर ना करें, क्योंकि अभी हम इग्नोर करेंगे और आने वाले समय में वही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाएंगी। तो इन बातों का ज़रूर खास ध्यान रखें, और घर की चीज़ों को सीक्रेटली रखा है तो उन्हें सीक्रेटली ही रखें, ऐसे पब्लिकली उन्हें मेंशन ना करें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो और आपकी बातें सब में फैल जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, इन्हीं कुछ खास बातों के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत संगीत। एक था दिल, एक थी धड़कन मूवी का खूबसूरत सा। तो आइए दोस्तों, इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे जो कम उम्र में ही छोटे छोटे से स्टेप जो है हमें लेना क्यों जरूरी होते हैं, खास करके स्वास्थ्य बीमा की हम बात करें। तो दोस्तों, अक्सर हम स्वास्थ्य को लेकर जो है वो लापरवाही ही बताते हैं, वो दिखाते हैं। जब तक हम ठीक हैं हमें लगता है नहीं बिल्कुल हम सही हैं, लेकिन

अनहोनी कई बार बीमारियां जो है वो पनपती रहती हैं, छोटी छोटी सी लापरवाही जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती रहती है। तो वहीं जहां हर चीज का इंश्योरेंस हम करवाते हैं, वहां हम स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जो कि हमारी जिंदगी की, हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, आजकल कई स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हर साल फ्री हेल्थ चेकअप भी देती हैं। अगर पूरे साल कोई क्लेम नहीं किया तो नो क्लेम बोनस का फायदा भी मिलता है। कुछ कंपनियां फिट रहने पर रिवॉर्ड और प्रीमियम में छूट भी देती हैं। तो ये छोटी सी बातें, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा। हम यही सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में अभी कोई बीमारियां नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्यों ही ये चीजें करनी या क्यों अपना समय इन चीजों में बर्बाद करना। लेकिन आज के समय में, इस भागदौड़ के समय में खास करके, जो हम एक तरह से भागते जा रहे हैं समय के साथ, सिचुएशंस के साथ, वहां हम अपनी परवाह नहीं करते, हम अपनी केयर नहीं करते। तो छोटी छोटी एज में अभी बच्चा जन्म ही ले रहा है, कुछ ही समय के बाद, चाहे वो एक साल, दो साल, तीन साल, कोई माइग्रेन तो कोई थायराइड, तो ऐसी ऐसी बीमारियां जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों, मुसीबतें तो है ना, जो हमारी छोटी सी लापरवाही, उसी से बहुत बड़ी मुसीबतें घर आती हैं। तो क्यों ना ये छोटे छोटे से कदम उठाए जाएं, जिससे कि हमें फायदा हो, हमारे पूरे परिवार को फायदा हो और हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। वैसे तो हम चाहते नहीं है कि बीमारियां हमारे तक पहुंचे, लेकिन वो बताकर तो नहीं आती, न जाने कब किस समय वो आ जाए बिना बताए, बिना पूछे। तो उसके लिए हमें पहले से रेडी रहना बेहद जरूरी है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं कुछ खास बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा, खूबसूरत सा गीत।

का ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत सुदेश भोसले अलका याग्निक के आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से रुक करते हैं जानकारियों की ओर। जानते हैं एक बहुत ही खास जानकारी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के CBSE संबद्ध सरकारी विद्यालयों में 9वीं कक्षा की हिंदी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता को लेकर शिक्षा विभाग ने अंतरिम व्यवस्था लागू की है। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश भर से कक्षा 9 की हिंदी माध्यम की पुस्तकों के उपलब्ध न होने संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका है। निदेशालय के अनुसार NCERT के अधिकृत विक्रेता यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना से दूरभाष पर प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल कक्षा 9 की गणित विषय की हिंदी माध्यम की पुस्तक ही मुद्रित रूप में उपलब्ध है। वहीं NCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कक्षा 9 की हिंदी माध्यम की सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें PDF प्रारूप में अध्यायवार डाउनलोड की जा सकती हैं। जी दोस्तों, तो इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी CBSE संबद्ध सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए हैं कि वे मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने तक NCERT की वेबसाइट से सभी विषयों की हिंदी माध्यम की PDF पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड कर उनका उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जाए। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए एंजॉय करते हैं इसी के साथ कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों कहते हैं ईश्वर कभी भी किसी को बिना कारण कठिनाइयां नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। आज जो परेशानी आपको रुला रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बस धैर्य रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। विश्वास रखिए, सही समय आने पर सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाएगा अगर आपको अपने भगवान पे विश्वास हो। जी दोस्तों, धैर्य हमारी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। अगर धैर्य है तो ज़िंदगी बहुत आसान है। तो फिलहाल तो हमारा कार्यक्रम बहुत ही प्यारा सा है इन प्यारे प्यारे से गीत संगीतों के साथ। तो आइए एंजॉय करते हैं प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो आज की जानकारी बहुत ही प्यारी सी थी, बहुत ही खास बातचीत जो है आप सभी के साथ की कि कम उम्र में स्वास्थ्य बीमा लेना आपके स्वास्थ्य, आपकी बचत और आपके परिवार की सुरक्षित भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अब दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
1: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
2: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
3: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
2: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
0: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
4: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
3: बहू, ठीक किया है तूने।

0: चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
3: टेस्ट
4: टेस्ट
3: टेस्ट
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
8: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी।
10: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
11: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: टेस्टिंग
3: टेस्ट
1: टेस्ट
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते

0: ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
1: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
2: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज, तू ही लाया इसे।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो के आज के इस एपिसोड में वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। कुछ बहुत ही बेहतरीन गाने आज मैंने चुने हैं और आपके लिए यहाँ पर मैं सुनाने वाली हूँ, आपके लिए लगाने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किसकी जिंदगी के पन्ने जो हैं वो पलटने वाली हूँ, किसके गाने आपको सुनाने वाली हूँ, किसके किस्से कहानी जो है वो आप तक लेकर आने वाली हूँ। तो आज जिस एक्टर की हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की थी और उसके बाद तकरीबन 100 फिल्मों में उन्होंने एज अ हीरो काम किया। नाम है इनका द वेरी हैंडसम विनोद मेहरा। फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद 1965 में इन्होंने एक टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस कॉन्टेस्ट में एक और भी एक ऐसे शख्स आए थे जो कि बाद में सुपरस्टार बन गए और वो ये कॉन्टेस्ट जीते भी थे। किन से हार गए थे हमारे विनोद मेहरा जी? क्या कमी थी ऐसी विनोद मेहरा जी में, बताएंगे आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले बहुत ही खूबसूरत सा गाना फिल्म घर से किशोरदा और लता मंगेशकर जी की आवाज में आपकी आंखों में कुछ, आडी बर्मन जी का म्यूजिक है, मेरा पसंदीदा गाना है, सुनिए।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं एक्टर प्रोड्यूसर विनोद मेहरा जी के बारे में। बॉलीवुड में लोगों के अफेयर्स वैसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन विनोद जी के लाइफ में लव अफेयर्स काफी मिस्टीरियस रहे हैं। विनोद जी की लव लाइफ के बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले जैसा मैंने आपसे कहा था कि 1965 में विनोद जी ने एक टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किया था। वो इस टैलेंट हंट को जीत नहीं पाए थे। ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर में विनोद मेहरा के अलावा राजेश खन्ना जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। 1000 लोगों ने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और विनोद जी को रनर अप का खिताब मिला था। राजेश जी जीत गए थे। इसके बाद विनोद जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो मार्केटिंग की जॉब वैसे भी कर ही रहे थे एज अ बैकअप। उन्होंने बॉलीवुड में आने का ख्याल छोड़ दिया। वो इतना डिसहार्टन और डिप्रेस हो गए थे इस हार के बाद। लेकिन डायरेक्टर रूप के शौरी जी ने विनोद जी को एक बार होटल में स्पॉट किया और बहुत जिद की कि फिल्मों में आपको एक्टिंग करनी ही चाहिए। तब जाकर 1971 में फिल्म बनी स्टारिंग विनोद मेहरा और तनुजा जी। जितनी सुलझी हुई इनकी प्रोफेशनल लाइफ थी, उतनी ही उलझी हुई और मिस्टीरियस थी इनकी लव लाइफ। कहा जाता है कि अपनी एक फिल्म की शूटिंग करते करते वो अपने को स्टार से बहुत क्लोज हो गए थे और उनसे छुपकर दूसरी शादी भी कर ली थी। कौन थी ये को स्टार और क्या थी वजह कि उन्होंने अपनी शादी को हमेशा छुपा कर रखा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनिए खुदार फिल्म से गाना डिस्को 82 किशोर दा और लता जी की आवाज में वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

साथी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश बैन, आज कहां का नेशन, काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सत्य।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। एक्टर प्रोड्यूसर होने के साथ ही साथ विनोद मेहरा जी एक ममाज बॉय भी हुआ करते थे। वो खुद इस बात को मानते थे। वैसे उन्होंने अपनी पहली शादी भी इसीलिए अपनी फैमिली, अपनी माँ की पसंद से ही की थी, जो कि एक बिजनेस टाइकून की बेटी थी। नाम था उनका मीना ब्रोका। लेकिन ये शादी ज़्यादा टाइम टिकी नहीं। सीक्रेटली ही वॉज ऑल्सो डेटिंग हिज को स्टार बिंदिया गोस्वामी, जिन्होंने खून खराबा, खूबसूरत जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। लेकिन उनका ये रिलेशनशिप भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बिंदिया जी विनोद जी को छोड़कर फिल्म मेकर जेपी दत्ता जी के साथ रहने लगी थी। इस हादसे को विनोद जी झेल नहीं पा रहे थे और तभी उनकी लाइफ में रेखा जी की एंट्री हुई। लेकिन कंफ्यूजन उस समय इतना था क्योंकि रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी के लव अफेयर की भी खूब चर्चाएं हो रही थी। दूसरी तरफ रेखा जी और विनोद मेहरा जी को साथ में जगहों पर स्पॉट किया जा रहा था। तो फाइनली काफी लंबा समय लगा विनोद जी को, लेकिन इस सारे कंफ्यूजन के स्टेट में से निकल के उन्होंने तीसरी दफा शादी की और दो बच्चे भी हुए उनके। एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली बना ही ली विनोद मेहरा जी ने। ऐसे आपको पता है, एक दिन विनोद जी ने अपनी एक को स्टार को कुछ ऐसा बोल दिया था कि उस को स्टार ने अगले दिन से सेट पर सबसे बात करना ही कम कर दिया था। कौन थी वो को स्टार और ऐसा क्या कह दिया था विनोद जी ने उन्हें, जानेंगे आप बस कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। अगला गाना सुना रहे हैं आपको फिर वही रात है ख्वाब की। फिल्म घर है और किशोर दा की आवाज में ये गाना है। सुनिए जरा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ। हमारी वर्क प्लेस पर हमने हमेशा यही सीखा है कि लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, किसी को किसी से कुछ लेना देना होता नहीं है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, और विनोद मेहरा जी भी कुछ ऐसे ही थे। स्पेशली व्हेन इट वाज अबाउट हिज को स्टार्स, तो वो काफी ज्यादा पजेसिव और पर्सनल हो जाया करते थे। एक बार एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी के साथ वो शूट कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि मौसमी जी सेट पर हर किसी से बहुत ही ओपनली बात किया करती हैं, क्लोज हो जाती हैं। विनोद जी को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने इन वन गो मौसमी जी से कहा कि जब आप एक्साइटमेंट में आकर किसी से बात करती हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं, ज़रा डिस्टेंस बनाया करिए, इतना उछल कूद मत किया करिए। घर पर माँ पापा के साथ जैसा आप व्यवहार करती हैं, वैसा सभी के साथ करना ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद मौसमी जी को एकदम से धक्का सा लग गया था। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गई थी सेट्स पर। वो भी विनोद जी को ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो वो खुद ही जाकर के मौसमी जी के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लिया करते थे। वैसे एक एक्टर और प्रोड्यूसर बनने के बाद विनोद जी का अगला गोल था एक डायरेक्टर बनने का, लेकिन किस्मत ने इनका साथ उस वक्त नहीं दिया और वो सपना अधूरा ही रह गया। कौन सी फिल्म थी वो और क्यों पूरी नहीं हो पाई वो फिल्म, जानेंगे बस कुछ ही देर के बाद। अभी के लिए आप सुनिए अजनबी कौन हो तुम गाना फ्रॉम द फिल्म स्वीकार किया मैंने, लता जी की आवाज में वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक्टर प्रोड्यूसर विनोद मेहरा जी के बारे में। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिंदगी में जिन्हें हम कभी पूरा नहीं कर पाते, कभी मजबूरी की वजह से तो कभी वक्त की कमी की वजह से। विनोद जी अपने फिल्मी करियर में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन उनकी हेल्थ काफी खराब हो गई थी। एक बहुत ही यंग एज में उन्होंने इंडस्ट्री के साथ सारी दुनिया को अलविदा कह दिया था। विनोद जी को 1990s का मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर बनना था और ये एक फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था गुरुदेव, स्टारिंग ऋषि कपूर, अनिल कपूर एंड श्रीदेवी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1990 में हार्ट अटैक की वजह से ये हमारे बीच नहीं रहे और डायरेक्टर बनने का इनका सपना सपना ही रह गया। वैसे गुरुदेव फिल्म को बाद में जाकर राज सिप्पी जी ने डायरेक्ट किया था और ये 1993 में रिलीज भी हुई थी। लेकिन मानना तो पड़ेगा, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे मशहूर सितारे होने के बावजूद विनोद मेहरा जी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगी फारूक शेख जी के बारे में, बताऊंगी कि क्यों जीना इसी का नाम है। जब फारूक शेख जी एक फिल्म चूज किया करते थे तो तीन शर्तें रखते थे साथ में। क्या थी वो शर्तें, ये जानने के लिए सुनिएगा अगला एपिसोड। फिलहाल सुनिए आप अगला गाना, पिछली याद भुला दो, मेहंदी फिल्म से किशोरदा की आवाज में।

0: जाने दो,
1: पर जाने दो।
0: हाय अल्लाह,
1: हाय हाय अल्लाह,
0: छोड़ दो ना,
1: छोड़ छोड़ दो ना।
0: मामा मामा माफ करो,
2: मामा मामा माफ करो,
0: जा जा जा जाने दो,
2: जा जा जा जाने दो।
0: हाय हाय हाय अल्लाह,
2: हाय हाय हाय अल्लाह,
0: छोड़ छोड़ छोड़ दो ना,
2: छोड़ छोड़ छोड़ दो ना।
0: अरे

0: मैंने कहा था ना,
1: तूने मुझे फंसाया।
0: माफ करो,
2: जान दो,
3: जान दो।

0: खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के

समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी बीजिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसुलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
5: तू अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने,

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
6: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज,

2.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने।

0: चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
3: टेस्ट
2: टेस्ट
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
8: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।

0: वहाँ ठीक ठाक है ना
1: हाँ जी, ठीक ठाक बढ़िया।
0: जी? क्या काम कार छेड़े जी, क्या करा दे?
1: कुछ नहीं, रेस्ट फरमावे हूँ, बरसाती कोई काम नहीं।
0: जी अच्छा, बरसाती से कोई काम कार नहीं है?
1: हाँ तो हाँ, इतने भू पापा ही मिले ना,
0: जी
1: कहने काबर नहीं, कुछ नहीं, कोई
0: जी
1: काम नहीं, बेले रखो।
0: जी चलो, वो बेले रहना भी जरूरी है ना जी।
1: प्रोग्राम इंतजार,
0: जी अच्छा, इंतजार रहता 2 बजे का।
1: हाँ कल भी लग गया है, कने
0: जी
1: भी थोड़ा त्यागा भी लगे हम, पर थोड़ा रेस्ट लेंगे ना रेडियो, ऐसे
0: जी
1: तो पंजाबी गाने लगे थे।
0: जी जी
1: हाँ
0: जी धक्के दे लग रहे तो जो पंजाबी गाने
1: बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया।
0: जी, अच्छा बढ़िया लगते
1: हाँ जी, और फर्स्ट क्लास।
0: जी। तमिग राज जी, आज तो कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: हर तो सुनाई दिया, बंदे कम मुकने नहीं, बंदा मुकदा मुकदा मुकी गया।
0: जी, जरूर गीत ते भजन तो तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत
0: जी।
1: धन्यवाद थोड़ा।
0: जी तो भी तो श्रोताओं, तुम्हें सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने तैसी गूंज कन्या। हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाने देना कन्या, कर देना अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत कन्या। कनेसी कन्या तुम्हें सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्या जुड़ी सकते कन्या, हाँ कन्या गलबात चिड़े से जरूर करी सकते। तो जरूर इस गलबात जो हाँ इतनी रोक देना कने तो हाँ जो ले करी चल देना गीत दी और।

0: ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे ही सुनिया ही प्यारा देया गीत प्यारी दे शुरुआत। इसी शुरुआत करने हाँ फिरी ते वापिस तुहां तक पुजी यो न गलबात करना। वैसे भी संडे दा दिन है, रविवार दा दिन है, तो तुहां इंतज़ार जड़े से जरूर कर देना कि कालू दिया रविवार का दिन या छुट्टी का दिन जड़े से आंदा है कने हाँ अपने काम कर देन या घूमना फिरना कर देन या अपनी फैमिली जो समय जड़े से कुछ ही ना कुछ ही रविवार के दिन हाँ दिन देन कने आज हाँ जिड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देन उसे करा देन तो हाँ सारी जो ही पता है मैं पहले भी दसी तो है फ्री ते जरूर तुहां तक पहुँचाई दी है क्योंकि तो हाँ जो भी इंतज़ार रहते कि आज कार्यक्रम च क्या गलबात चली हुए या अजकने दिने दी क्या खासियत है या अजकना जेड़ा महीने दी जेड़ा शुरुआत ऐसे हुई हुए कने आज 2 अगस्त है यानी कि दूआ दिन है तो ज़रूर अजकने पन्ने च क्या वे अजकनी जेड़ा किताब है या दूआ दिन है दुए दिने दे पन्ने च क्या वे आज यहाँ जिड़ा स्पेशल जिड़ा खास दिन है से बना देन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी बना दे कने इसी कने एक और खास जिड़ा हाँ बोली सकते दिवस हाँ बना देन से बना देन इंटरनेशनल सिस्टर डे हर साल 2 अगस्त जो बना देन तो ज़रूर बहना दी अहाँ गल कीती या जिड़ा भाई बहन का रिश्ता है से कुछ ना कुछ अहाँ जो एक ही दुए कने जोड़ी करी रखता है कने तुहां भी अपने जिड़ा विचार हैं या तुहां तुहां जो कितना की लगता कि अहाँ दे जिड़ा रिश्ते न चाहे से भाई बहन का रिश्ता है चाहे कोई भी रिश्ता है तिस दी अहाँ दे जीवन च कितनी की अहमियत है तो ज़रूर अहाँ दे अगले जिड़ा श्रोता न से जुड़ चुके हैं ना कर दिन तिना करने गल बात। हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार
0: जी नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: जी बढ़िया है मैडम जी
0: जी तुह कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना क्या है जी
1: जी मंडी नहर चौक ते बोल दे जी लवली ना जी मेरा
0: जी मंडी ते बोला दे
1: हां जी
0: जी ता मंडी वाले दे क्या हाल चाल है जी मौसम कदे है उस साइड
1: मैं जी धूप लग रही मौसम खराब हुआ नहीं करता बारिश हुआ नहीं करती
0: जी अच्छा मंडी वाली साइड बरखा नहीं होती
1: हां मैडम जी धान लगाए रे बारिश हो जाने तो बहुत बढ़िया जाएगा
0: जी जी ता धान ने लगाए कितना टाइम होया अल्ली
1: पहले तो बारिश हुई पर इस टाइम तो दोरिया सूखी गई
0: जी जी जी ता आज यहां जेड़ा खास दिन बना देन अगर तुह सुनी लिया होगा तो जरूर तुह जो पता होना है
1: मैं तो फोन नेट लगाने से बिजी होया
0: जी अच्छा अच्छा जी इंटरनेशनल सिस्टर डे जड़े से आज हाँ बना देन कने इसी कने जड़ा दोस्ती जड़ा हर कुसी दी खासियत होंदी ना जी
1: जी मैडम जी
0: जी दोस्ती का चुनाव तो हाँ वैसे भी खुद ही कर देना जी चाहे यहाँ स्कूल जान देना चाहे यहाँ कॉलेज जान देना चाहे जी तो तुम्हें क्या लगता दोस्ती दा अहां दे जीवन
1: दोस्ती बहुत जरूरी है मैडम जी स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक दोस्ती तो होंदे जिना करके बंदा स्कूल जांदा
0: जी जी
1: दोस्ता करके तो स्कूल पहुंचता कॉलेज पहुंचता
0: जी जी पर तुम्हें क्या लगता दोस्त जड़े से अहां जो क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी खासियत होंदी ना जी
1: जी मैडम जी
0: जी जिन्हें अगर दोस्त हैं कई दोस्त जड़े से अहां जो प्रेरणा दे करी भी जाते या अहां जो हमेशा आगे बढ़ने की जड़ा प्रेरणा है से जरूर दें दे ना जी
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी
1: ये तो है
0: जी तो हर चीज़ का अगर अहां चुनाव कर देना तो जरूर पहले सोची समझी करी ही क्योंकि आजकने दौर की गल करिए हर कोई अपना ही फायदा जड़े से दिखता है ना जी
1: मैं स्कूल टाइम तो जड़ा होता नहीं पर बाद जो हुई जाता
0: जी जी स्कूल टाइम दी ता अलग ही जड़ा दोस्ती ऐसे तीस जो तक कोई नहीं भूली सकता ना जी
1: हां जी बाद जो ता फिर मतलब ही हो जांदे कोई कोई अपने अपने मतलब काट दे
0: जी कई होंदे जड़ा हमेशा साथ दिंदे, चाहे यहाँ दुख दे समय चन, यहाँ सुख दे समय चन, हर समय साथ दिंदे। पर
1: बड़ा
0: जी, तो तुहंदा भी कोई दोस्त है जिस जो तुहां याद करना चाहेंगे आज?
1: हाँ, मेरा एक दोस्त है नीटू
0: जी
1: वाली है जी, वो मैकेनिक दा काम करता जी।
0: जी अच्छा
1: मैं डेली
0: जी
1: दोपहरी चाह पीने जाते
0: जी
1: तके।
0: जी तो ज़रूर, अगर है सुना देंगे रेडियो तो ज़रूर सुना देने ना जी।
1: हाँ जी मैडम जी, गाना लगा दो
0: जी
1: तेरे जैसा यार कहाँ।
0: जी ता ये गाना हिंदी है, पहाड़ी ही गीत तुहां सुनी सकते इस ना जी।
1: मैडम तुसी सुना दो कोई बढ़िया ये पहाड़ी गाना।
0: जी ज़रूर जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा
1: जी मैडम जी,
0: जी।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोस्त शशि कन्ने, इसी कन्ने हाँ फ्री ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कन्ने तुम सारे जोई ले करी चलते न अगली गीत की तरफ या फरमाइश की तरफ।

0: तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शतो तुहां सारें सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नावे सौरभ जी कने सरैने वाले ने पालमपुर ते तो जरूर तिना तक कहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने तुहां सारियां भी इंजॉय की। इसी कने फिर ते अहां वापिस अपनी गलबात उपर पुजियो न कने समय भी जेड़ा बोली सकदे कि अपनी रफ्तार लेकरी चले है। जरूर अगले जेड़ा श्रोता न सभी अहां कने जुड़ चुके हो न तिना कने भी अहां करनी है गलबात से कुथु दे रहने वाले न कने तिना दा ना क्या है, क्योंकि ना ग्रह जानना भी जरूरी है। कई बार होंदा ना कि अपना जेड़ा ना है या ग्रह है अहां जो भी जेड़ा खुशी है से जरूर तुहां जो भी मिलती है तो कर दें तिना कने गलबात। हेलो
1: हेलो नमस्ते शशि जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी? जी बिल्कुल जी, धन्यवाद जी।
0: जी तुहां दा तां ना ग्रह अहां पहले जानी है ना जी। हर किसी दी अपनी अपनी सोच है ना जी।
1: बिल्कुल
0: सोच पर निर्भर करदा कि अहां क्या सोच विचार रख दे ना जी।
1: बिल्कुल जी
0: जी। ता इंदु जी आज क्या तोहंदे विचार हैं?
1: आज क्या विचार न?
0: जी जी
1: ठीक है। अपने विचार में तो जो एक छोटी सी चार लाइना सुनाएंगी।
0: जी जरूर जी।
1: रिश्तों में सबसे खूबसूरत रिश्ता दोस्ती है
0: जी।
1: ना खून का बंधन ना मतलब की मस्ती है
0: जी।
1: एक शब्द में दर्द बांट ले एक नजर में समझ जाए। एक शब्द में दर्द बांट ले एक नजर में समझ जाए।

0: दोस्ती मिल जाए तो हर मंजिल मुश्किल मंजिल भी आसान लगती है।
1: जी ता दोस्ती दा जिहड़ा रिश्ता है से बिना खून दे बिना स्वार्थ दे अहां बोली सकदे, क्योंकि
0: जी
1: दोस्ती दा जिहड़ा चुनाव है ना से अहां खुद ब खुद कर दे। कने दोस्ती अगर अहां दा बुरा समय चलिया है या क्योंकि समय दा भरोसा नहीं होंदा ना जी, कल नू क्या आई जाना है क्या हो जाना है, तो दोस्ती भी जरूर अहां दा साथ दिंदी, पर स्याहा पर निर्भर करदा कि अहां दोस्त किस तरीके ने अहां दा साथ दे दा ना जी।
0: जी बिल्कुल बोलते ना, दोस्त चुनो, दोस्त बनाओ तो चुनो तो भाई बढ़िया चुनो, है ना
1: जी।
0: ये हुण मेरी मेरी फ्रेंड है ना, हां स्कूल टाइम में फ्रेंड है ना
1: जी,
0: ता अहां अज भी गलबात हुंदी हाड़ी, मेरी फ्रेंड है जॉब करदी है तहसील ना
1: जी, बोलना ही मत भूली आंदे आज हां जेड़ा सिस्टर डे भी बना दे ना जी,
0: एकदम जो आज साफ नहीं आदी।
1: हेलो,
0: हां जी हां जी
1: जी, हुण मेरी आवाज सुन रही तुहां तक?
0: हाँ जी, कौन डे मना रहे तुम्हारा मतलब मुझे समझ नहीं गई।
1: सिस्टर डे, बहन दिवस। हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा सिस्टर डे है।
1: जी जी।
0: अच्छा इधर बारे नहीं समझे पता।
1: जी तो जरूर हाँ तो हो तक दसी था ना जी।
0: हाँ जी सिस्टर डे तो मैं तो ही बोल गई कि दिया उन मेरे पेरेंट्स नहीं ना
1: जी,
0: तो दिया बड़ियां भैन हुई तो छोटी उन कोई भी है, लेकिन मतलब बड़ियां भैन जड़ियां ना छह मोह प्रोनी जगह पर होनी है, जलू माइका च होंदा कि माइके हां बोलदे ना कि माइका के मम्मी या पापा वगैरह, लेकिन जब तक बड़ी भैन है ना तां इहन लगदा नहीं कि इतना गलाई सकदे कि बड़ियां भैन जिहड़ियां छे भी जिहड़े घर जाना छे भी हां जो माइका लगदा
1: जी जी, क्योंकि
0: कने एक
1: जी
0: हां जी कने एक भैन भैन जिहड़ा रिश्ता ना छे बड़ा अटूट और विश्वास पूर्ण रिश्ता है
1: जी, बड़ा ही विश्वास दे, पर सही है ना कि समझिए तो हर चीज अच्छी, कने अगर अहां रिश्तियां जो समझ देना ताई तिना पर विश्वास है ना जी।
0: जी बिल्कुल,
1: पर कई बार होंदा ना कि अहां दी बहन है से अहां जो फुल सपोर्ट कर दी ना जी,
0: जी बिल्कुल,
1: कई बार अगर अहां असफल हो देन ते से अहां जो जरूर सफलता दी ओर लेकरी जांदी।
0: जी बिल्कुल, अहां अपनी बहन ने दुख दुख ला दे सही बड़ा होंदा कि अहां बहन कुड़ियां के दुख दुख ला दे, जरूरी नहीं कि बड़ी हेल्प कर सकती, छोटे भी हेल्प, छोटियां भी हेल्प कर दिया, छोटियां भी समझ, ऐसा अपने अपने डिपेंड करता ना, बोलते चलो जिसकी जरूरत है ना उसका साथ देना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
1: बड़ा हो जी जी। ता इंदु जी आज तो हा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
0: सुनाई थी, अपनी मर्जी का कोई भी
1: जी, मेरी मर्जी है तो सुनना कि अपनी मर्जी है तो सुनना,
0: थोड़ी पसंद सुन लेना आज, अपनी पसंद सुन दे रहे, थोड़ी पसंद सुन लेंगे
1: जी। जी जरूर जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, तो हुंदा
0: तो हुंदा बड़े बड़े धन्यवाद जी
1: जी। तो श्रोताओं तो हम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, इसी कन्ने हम अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं, कन्ने तो हम जो लेकर चलते हैं अगले गीत की ओर, सुनते नहीं सा प्यारी दिया फरमाइशा जो ये फरमाइशा हाँ जो आई हुए दाड़ी ते कने तिना दा ना वे मेघना जी, तो जरूर तिने तक अहाँ गीत फरमाइश या भजन पहुँचाने कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय करना है, क्योंकि तो हाँ सारे भी इंतजार करा देने कि कलू दिया तो जेड़ा फरमाइशा न से अहाँ तो हाँ तक पहुँचान, चला तो सुनते नहीं सा प्यारी दिया फरमाइशा जो तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे सुनिया ही प्यारा दिया भजन प्यारी देई फरमाइश। इसी कन्ने बाकी जिहड़ा श्रोता न सभी जरूर अह तक फरमाइश अपनिया पहुँचा देन। कन्ने अह दी कोशिश भी यही रहनी है कि तिना दियां जिहड़ा प्यारियां प्यारियां फरमाइशां न से जरूर अह तिना तक पहुँचानियां न। कन्ने अह गलबात करा देन खास दिन जिहड़ा से अज अह बना देन इंटरनेशनल सिस्टर डे। इसी कन्ने फ्रेंडशिप डे भी अह बना देन। अहदे जीवन च दोस्ती दा महत्व, दोस्ती दा महत्व जिहड़ा से अहदे जीवन च बड़ा ज़्यादा है क्योंकि दोस्ती जी जिहड़ा खासियत है से अलग ही है। चाहे अह स्कूल टाइम की गल करिए चाहे अह कॉलेज टाइम की गल करिए जिहड़ा दोस्ती दा महत्व है ना से अह जो कुछ ना कुछ सफलता की ओर भी लेकर जाता है या समय के अनुसार अह जो बड़ा कुछ सिखाई करी जाता है पर अह क्या सीख जिहड़ा से लेंदे न से अह पर निर्भर करता है। तो इसी कन्ने अह आज जिहड़ा संडे का दिन तो सारे इंजॉय करा दे होने न कन्ने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला भी सुना दे होने न कन्ने अपना जिहड़ा कम कार है सभी करा दे होने न तो जरूर कम कार तो करा कन्ने कम कार करते करते तो हाँ जो अगले गीत की ओर लेकर चलते न फरमाइश की ओर लेकर चलते न ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाम है सभी जरूर तुह तक पहुँचाते न सुनील कुमार जी कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोड़ ते तो जरूर अहाँ कोठियाँ जलोड़ तक ये फरमाइश पहुँचा देना तो सारे भी इंजॉय करा।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कन तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन आपने रेडियो दो शशि कहने दर्शकों गलबात करिए कि आज जहाँ जिड़ा खास दिन बना देन या आज कने दिने दी खासियत जिड़े से जरूर तुहां तक पहुँचा देन बहन दिवस जिड़े से आज जहाँ बना देन दर्शकों वक्त जिड़े से बदली सकता घर आंदा जरूर जिड़े से बदली सकता क्योंकि जिन्हें जिन्हें अह अपनी जिंदगी च बड़े हो जाते तिना ही अह एक दुए तो जिड़े से दूर हो जाते तो इसी कन्ने अगर अह जो एहसास ये होंगे कि बचपने दियाँ जिड़ा लम्हे न से मिली करी अह बिताए न चाहे से भाई बहन का प्यार है से एक दुए कन्ने अह साझा करते न या सुख दुख जिड़ा से एक दुए कन्ने अपना बंडते न कने अगर अह जो कुथी लगता है कि अह अपनी जिंदगी दे सफर च कुथी रुकी हो न या अह सफल नहीं होते न या अह कोई भी शुरुआत करा दे न ता जिड़ा बहन का प्यार है से जरूर अह जो सपोर्ट करता है या अह जो आगे बढ़ने वास्ते जिड़ा प्रेरणा है से जरूर दिंदा है। कई बार होता ना कि चाहे से छोटे न चाहे से बड़े न छोटे भी अह जो बड़ा सिखाई करी जानते न बड़े तो सिखाते सिखाते न पर छोटे भी अह जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते न जलू अह जो सपोर्ट मिली आता है चाहे से बहन का प्यार है चाहे से भाई का प्यार है चाहे से माता पिता का प्यार है कुथी ना कुथी हर रिश्ते दी अपनी अपनी जेड़ा अहमियत है से जरूर है पर हर रिश्ता जेड़ा से विश्वास करने टिकदा है अगर हाँ विश्वास करने हर रिश्ते जो निभाते न प्यार भावना एक दुए अंदर रखते न तो जरूर अह अपने रिश्ते जो हमेशा कायम रखते हैं तो इसी कन्ने अह अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है कन्ने तुह सारी भी इंतज़ार जेड़े से जरूर करा दे उन्हें इंतज़ार दी जेड़ा घड़ी है से बिल्कुल ख़त्म है तो ये फरमाइश अह पहुँचा देन जेड़ा अह जो कॉल आई थी मंडी ते कने तिना दा नाम भी जरूर तुह तक पहुँचा देन लवलीन शर्मा तिना तक कहाँ की ते फरमाइश पहुँचा देन तिना कोई भी पहाड़ी गीत सुनना है तो जरूर अह डोगरी हिमांचली जेड़ा गीत है से तिना तक पहुँचा देन।

ఏదో సారే నా రీటి గుంజన్ ధరం శాలా తర్శత గల్బాత్ జరూర్ అహా కన్న ఫిరి తే వాపిస్ ఆయన్ తుహా తక్ కన్న తుహా సారీ భీ జరూర్ అప్నా అప్నా రేడియో సెట్ ఓన్ కి త్యోనే యా మొబైల్ ఫోన్ చి సునా దేవనే న కన్న ఈ సఫర్ జో జరూర్ ఎంజాయ్ కరా దేవనే న దర్శత కుచ్ జానకారియా జిడా న సె జరూర్ తుహా తక్ పహుంచాన్ దే న అగలే హఫ్తే తే జిడే సె हिम बस प्लस कार्ड जिड़े से HRTC जिड़ा यात्री है से शुरू यानी कि तो हाँ बनाई लिया जिड़ा हिम बस कार्ड है से बनना जिड़े से शुरू यानी ना कने तो हाँ जिड़ा यात्रा है से ज़रूर करी सकते कने इसी कने बिना टिकट दे अगर तो हाँ यात्रा करते ना तो 500 रुपया जिड़ा जुर्माना है से परिवहन निगम ने जिहड़ा इस जारी किते है दर्शो तो जरूर तो हाँ अपनी जिहड़ा टिकट है से जरूर लैनी है। अगर कई बार होंदा ना कि यहाँ खुद भी अगर कनेक्टर जिहड़ा से टिकट लेने च या वैसे तो हर इंसान सतर्क होंदा या हर इंसान अपनी जिहड़ा ड्यूटी है से प्रोपर तरीके ने निभांदा पर तो हाँ भी अपनी ड्यूटी जिहड़ा से प्रोपर तरीके ने निभाना बनता है क्योंकि कई बार होंदा ना कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होंगी तो तुहां भी अपनी जिहड़ा सोच है से हमेशा सकारात्मक रखनी है। कने जिहड़ा छोटे किसान हैं तिना जो भी HP शिवा परियोजना जिहड़ा लाभ है तिना जो भी मिलना है तो इसी कन्ने अहां फ्री ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं क्योंकि जेड़ा श्रोता न सभी जरूर इंतजार पर हैं तिना दा इंतजार फ्री ते खत्म करते हैं कने तिना जो लेख रे चलते हैं अगली फरमाइश दी ओर।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश इस फरमाइश के बाद अहाँ फिर ते अपने कार्यक्रम के सफर शगे वरते न कन्या जेड़ा फरमाइश अहाँ तक पहुँची हुए से पहुँची हुए पर साहब के माध्यम ने तो जरूर दिन तक अहाँ ये गीत फरमाइश पहुँचा देन।

दर्शो तो इसी गीत कने तो सारी अपनी रेडियो दो शशीर दिया अनुमति क्योंकि कार्यक्रम का जोड़ा समय है सेतु संपन्न होंगे तो इसी कने तो सारे ही हंसते रहा कने हमेशा खुश रहा कने अपनापन की दुए अंदर जोड़ा इसे जरूर रखा।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
6: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूं कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े वहां पर अब बिजली बिल जीरो, सोलर पैनल लगवा। आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तू अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
1: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।

0: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
1: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज

नमस्कार श्रोताओं, तुसी सभीओ मेरा प्यार भरा नमस्ते हा। हूँ सचिन कपूर हा, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ हा। सभी हुणने आले रा तहे दिल तो स्वागत करनो अभिनंदन करनो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच। तो सभी इस समय ट्यून कर रहा हा 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला। तक देने श्रोताओं तो है सब उम्मीद करनो सब खरे भुने राजे बाजे भुने। चलिए जी कार्यक्रम मंच सभी पहले गीत हूँ लेना चाह था तुम भी कुछ दे दे वल्लू कर दे कि गीत हूँ लेंदे ने। लेकिन चलिए शो तो अगर चाह हा ना तो फिर चाह जो मकान न चींदा और चाह जो चाई होगी कि असो हूं न चींदा है ना। तो सब भी चाह कि पहले गीत हूँ लै ताइ आगाज कर देन कार्यक्रम रहा इस गीत सोगे।

बहुत आनंद आप उन सब जो गीत ढूंढने का शो तो सब ये ट्यून कर रहे समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव फोनो कर देने अपने अपने वेडियो सेट मा हिंदी अपनी गप्पा आइए जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं शो तो आज असू गलबात करने हाँ बुजुर्गा रे बारे अंदर की आखिरकार बुजुर्गा रा ख्याल किया सो असू की करे रखना हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बड़ा ज्यादा जरूरी है शो तो की बुजुर्गा रा ख्याल किया सो है की करे रखना है ना सिर्फ तीनों त्राई टाइम मेरी रोटी देना या त्राई टाइम मेरा खाना दीना ही तैयारी सेवा नहीं है शो तो और भी बहुत चीज अगे ने सो है कर सकते हैं अपने बुजुर्गा वास्ते बशर्ते अगर करना चाहता अगर ना करना चाहता फिर क्या बोले सकते हैं ना और दिल में इच्छा बुने चिंदिया सो जज्बात बुने चिंदे सो संस्कार बुने चिंदे तो सब काम किया सो बुझ गंदा टाइम ना लगो या टाइम नहीं है ये तो सिर्फ एक बहाना है शो तो समय सभी ले 24 घंटे रहे बंदा सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ही निंदे घर अंदर तिन्या वास्ते समय कढ़ना इंदा दायित्व और असु जरूरी भी हा तो चलिए दस ले जरूर लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में हुण देन पहले गीत

तशोतो आत्मो के फिर स्वागत है सभी वह गीता थों बाद बुजुर्गा रिया है गल बात लोरे था बुजुर्गा भी देखभाल करना त्यारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो प्राथमिकता देना है सभी पहले था त्यारा मानसिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है त्यारा शारीरिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है और इतियो सब थो पहले इम्पोर्टेंस देना की आ सोइंदा दायित्व बनता है शतो तिन्यो सक्रिय और फिट रहने वास्ते किया सो तिन्यो प्रोत्साहित करना तिन्यो मोटिवेट करना ए इंदा फर्ज बनता है शतो नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी इंदा ही फर्ज है तिन्यना बलना सो की असु रेगुलर स्वास्थ्य जांच वास्ते की असो बच्चा लेकर चल या फलाने लेकर चल ए इंदा फर्ज बनता कि तिन्यो है लेकर गान उचित पोषण दीन तिन्यो शतो सामाजिक रूप थो सक्रिय रखना और त्यारी व्यक्तिगत जागरूकता जो समझना और तिन्या मंच समझ बनाना शोतो तिन्यो अंडरस्टैंड करना ये भी सिर्फ और सिर्फ इंदा ही दायित्व है ना कि त्यारा कि सो बाल ले आंसू करना इस बाला मत बगा शो तो फिलहाल कार्यक्रम जो है गो बढ़ंदे और सो सभी जो हुनंदे ने गीत

कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप मौके फिर ये सभी होने वाले रहा तो सब मैसेज कर सकते हैं 14708889 पर। फिलहाल कार्यक्रम जो बढ़ंदन हगो और बुजुर्ग रिया है गलबात लौ रहे थे श्रोताओं तो चलिए थोड़ा करिए और इस टॉपिक जो हगो बढ़ंदन सो बुजुर्ग सच में बहुत दिल थो आशीर्वाद दिन दे दिल थो खुश बुंदन अगर त्यार रहते है तीनों टाइम में रहते हैं नुआई दिन देने टाइम मारे त्यार कपड़े धोई दिन देन टाइम मारे तीनों खान पान टाइम मारे तीनों अगर तुसको लगता कि बुजुर्ग के न सो थोड़ी करी एक्सरसाइज करी सकते हैं तो त्यारी एक्सरसाइज कराई करी तीनों सो तो धुप्पा बखाली करी भी कजो की धुप भी की सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुंदी सीजन वाइज ता इस सब चीजा का ख्याल किया सो रखना इनका दायित्व इनका कर्तव्य महत्वपूर्ण अंग हा बुजुर्ग श्रोतो इनके परिवार मंच है ना जी ता शारीरिक देखभाल की कर रखने शो तो सोचो कर दें ता रोजाना तीनों व्यायाम करा योग करा बुजुर्ग जो व्यायाम और योग वास्ते की सो प्रोत्साहित करा तीनों सोगी करा इवन की एक्सरसाइज है ना और तीनों फिट रहने वास्ते कि सो बल्ला शो तो है ना बीमारी थो दूर सुस्ता ही रह सकते जहने एक्सरसाइज कर ले जहने सो अच्छा फल फ्रूट खा ले जहने सो शो तो पूरे तरीके हो गए कि सो योगा कर ले व्यायाम कर ले थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं तो सो कर ले ता सो बीमारी तो दूर रह सकते हैं। बहरहाल चल दें और कार्यक्रम में हूँ देने गीत

कार्यक्रम सचिन कपूर सोगे हुण गर्दन तो है हिंदी अपनी गपा हक मौके फेरे बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है सभी हुणने आले रा सभी श्रोता गणरा आऊ सचिन कपूर रा कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा हुण गर्दन और आज है कार्यक्रम में श्रोताओं टॉपिक लियो रा बुजुर्गारी देखभाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेरा बुजुर्ग वास्ते अच्छा और ताजा खाना के असो तीनों को आना चिंता है ये ना कि बात करनी रोटी बच रही सो सेकी करी देते जी काम निपटाई लो कि कर खदाम लग रहे और बुजुर्ग ना खंदे था ब्याकनी रोटी है या ब्याकना कुछ प्यूरा बात सब्जी तो सो सेकी करती देता है ना बुजुर्ग का वास्ते खास कर सो तो है पुदे कर लिया कोई सुने को तो है डाइजेस्ट कर सकते तो है कम करू कर देन बुजुर्ग बेचारे आग जगह बेखुरे बंदे ना तो जो कि तीन सारी उम्र तक मेहनत कर रहे बंदे सो तो अच्छा खान पीन दीना के असो इनका दायित्व बनता है प्रोटीन युक्त संतुलित आहार तीनों दिन छोतों और फास्ट फूड तो वैसे बुजुर्ग इन देर देने और तुसु भी लत लवानी बुजुर्ग है ना कई सियाने इन बोलते कि हाँ ले इंदे है तो खाई लेंदे ना है तो ना खाना फास्ट फूड बिल्कुल ना खाना और प्रदूषण तो बचे करे रहना ज्यादा प्रदूषित जगह के असो बुजुर्ग जो ना ले करे गाना छोतों स्वास्थ्य जांच के असो नियमित रूप थो डॉक्टर थो स्वास्थ्य जांच करवाओ करा सो तो उचित समय में किया सो तीनों दवाई किया सो दिच्छु करा और रेगुलर रूटीन चेकअप किया सो बुजुर्ग का कराना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहरहाल चल दिन थोड़ा करी और हम और तो है हूं कर दिन कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा सचिन कपूर सोगे।

सामुदायिक वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रो रहा हूँ सचिन कपूर रहा तुम अपना आज ये वेड़ी जो की हया कार्यक्रम जो आगो बढ़ेंदन शोतों और मानसिक और सामाजिक देखभाल रे बारे में गल बात कर लेंदन सक्रिय जीवन शोतों तिन्या सक्रिय और व्यस्त रहने वास्ते की आज सो प्रोत्साहित करना है ना कहो की ये मानसिक स्वास्थ्य जो की आ सो बढ़ावा दिंदा हा अगर सो बुजुर्ग व्यस्त रहते जो सो काम कर सकते न मतलब है ना तिया सो अगर काम कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी गल है तिहारा मानसिक स्वास्थ्य के इतों ठीक रहता है सो तो शरीर भी किया सो थोड़ा बहुत फिट रहता है सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है बुजुर्ग वास्ते अकेलापन जो काम करना है बुजुर्ग रे भावनात्मक भलाई वे वास्ते की तीनों परिवार और दोस्त हो गए की जोड़ी करी रखना है कोई सियाणा के इनके घर है सो तो सो अगर तुसो लगता की अकेला फील करू करता तो तस्यो अपू होके जोड़ी करी रखा या फिर आस पड़ोस में कोई और सियाणा इनते तीनों आपस में किया गलबात तैयारी भुआ इस गला रे खास ख्याल रखना अगर सो ना गलबात करने लायक ही या ना ही ने गाने लाइक ने तो है किया सो अपने बुजुर्ग हो गए लगातार संपर्क में रहे तीनों अकेलापन किया सो फील मत कराश हो तो कार्यक्रम जो थोड़ी करी और हगो बढ़ेंदन और हुंदे ने प्यारे दे गीत।

श्रोता भैया कार्यक्रम इस समय तो हम करते हैं सचिन कपूर सोगी इंदी अपनी गप्पा तो श्रोता अपने घर में बुजुर्ग की देखभाल जरूर कर है ना घर में बुजुर्ग की देखभाल कर देना अगर तो है श्रोता तो सब घर घर ना मंदिर बनी सकता है और मंदिर बनी गंदा है जाने तो वे बुजुर्ग की तड़ी देखभाल कर देने और तीनों बढ़िया तरीके होगी कि सो रख दे इन श्रोता है ना जी इनके बुजुर्ग जो कि सो समय समय में मैं दसो दुआ दिया चिकित्सा देखभाल रा प्रबंधन त्यारा करा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पौष्टिक भोजन प्रदान तिन्यों करा श्रोताओं शारीरिक गतिविधि जो वास्ते तिन्यों प्रोत्साहित करा श्रोताओं है ना संगीत तिन्यों होना अगर तिन्यों पसंद आता संगीत तिन्यों होना है ना नचना की है सो तिन्यों बल्ला की आम दुई दुई पराठी लाई लेंदे या बाबा दुई दुई पराठी के सो लाई लेंदे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना घर मन जो बुजुर्ग रहे कर दिन तैयारी देखभाल की है सो करना बहुत इंपोर्टेंट है असू सभी वास्ते श्रोताओं तो श्रोताओं अभी आऊँ सचिन कपूर ले लें तो सुथो इजाजत और गंदे गंदे बस ये बोलना चाहूँ जो हमेशा बोलो कि बुजुर्ग की सेवा करते रहे और आज का टॉपिक भी था इति पर है और आज का ये मेरा कार्यक्रम की सो इन बुजुर्ग पर हा श्रोताओं तो इन बुजुर्ग जो समर्पित है प्यारा दे कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा आज सचिन कपूर री तरफ था और रेडियो गुंजन री तरफ था सो प्लीज टेक केयर अपने बुजुर्ग रे की सो ख्याल रखा टेक केयर करा बुजुर्ग री मोस्ट इम्पोर्टेंट ही ना सुवास्ते इन था श्रोताओं घर किया सो घर

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। अगले हफ्ते से बनेंगे हिमबस प्लस कार्ड HRTC की बसों में यात्री बढ़ाने में साबित होगा गेम चेंजर। बिना टिकट यात्रा पर ₹500 जुर्माना, परिवहन निगम ने जारी की नई SOP, पुराने आदेश निरस्त। देश के दूसरे ब्रिज रनवे की ऊंचाई पर टिका एयरपोर्ट का विस्तार। स्कूलों में बनेगा आपदा प्रबंधन प्लान, बाढ़ से सुरक्षा पर जोर। छोटे किसानों को भी मिलेगा HP शिवा परियोजना का लाभ। अब समाचार विस्तार से।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 158 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में आवासीय परिसर एवं छात्रावास सुविधाएं भी शामिल है। इस परियोजना के साकार होने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। अस्पताल में ब्लॉक ए, बी तथा सी के माध्यम से रोगी उपचार एवं चिकित्सा शिक्षा की समग्र सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इस अस्पताल में 8 प्रमुख विशेषज्ञ जिनमें मेडिसिन, शिशु रोग, मनोरोग, चेस्ट एवं क्षय रोग, टीवी, शल्य चिकित्सा, ईएनटी, प्रसूति एवं स्त्रुति रोग तथा दंत चिकित्सा की ओपीडी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त अस्पताल में आधुनिक आपातकालीन सेवाएं, रेडियोलॉजी विभाग, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर परिसर सहित 200 इंडोर विस्तरों के माध्यम से अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। मनोरोग गायनोकोलॉजी विभाग तथा त्वचा रोग विभागों की सेवाएं मरीजों को मिलनी प्रारंभ हो गई हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में अब सभी कार्डों को मर्ज कर अब ही नया हिमवस प्लस कार्ड बनाया जाएगा। अब तक बनाए गए सभी पुराने कार्ड अब एक ही कार्ड में मर्ज किए जाएंगे। इस कार्ड को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गत सोमवार को लॉन्च किया है। ये नया कार्ड अब निगम के लिए गेम चेंजर कार्ड साबित होगा। निगम की बसों में यात्रियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए ये डिजिटल प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके लिए अगले सप्ताह से कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बस कार्ड का लाभ ये होगा कि ये बाहरी राज्यों पंजाब हरियाणा की बसों में के अलावा दिल्ली मेट्रो में चल सकेगा। यात्रियों को स्मार्ट और डिजिटल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्ड लाया गया है, जिसके लिए प्रतिदिन का 1 रुपए चार्ज यात्रियों को देना होगा। एक वर्ष में इस कार्ड का 365 रुपए खर्च होगा। हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने टिकट रहित यात्रा और टिकटिंग में अनियमितताओं लगाम लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया पर SOP तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। इसके साथ ही टिकट रहित यात्रा से जुड़े सभी पुराने कार्यालय आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। नई SOP में नियमित और संविदा कंडक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, यात्रियों पर जुर्माना, बच्चों के टिकट, EVDM मशीन के उपयोग और शिकायत करने वाले यात्रियों को पुरस्कार देने तक के विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

नई एसओपी के अनुसार बिना वैध टिकट यात्रा करना टिकट रहित यात्रा माना जाएगा। यदि कंडक्टर किराया वसूल कर टिकट जारी नहीं करते हैं, कम किराए का टिकट देते हैं, तो इसे गंभीर अनियमितता माना जाएगा। यात्री पर भी 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार ने अब एक अहम तकनीक पड़ाव पार कर लिया है। यहां देश का दूसरा ब्रिज रनवे यानी पुल पर हवाई पट्टी मांझी खड्ड के ऊपर प्रस्तावित है, जिसके लंबाई और चौड़ाई का खाका लगभग तैयार हो चुका है। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पुल की ऊंचाई पर फैसला होना बाकी है। ऊंचाई पर अंतिम मुहर लगते ही एयरपोर्ट विस्तार का अगला चरण पूरी रफ्तार से शुरू हो सकता है, जिससे हिमाचल प्रदेश में बड़े विमानों के उतरने का सपना जल्द साकार होगा। मानसून के दौरान प्रदेश में भूस्खलन, बादल फटना, अचानक बाढ़ और सड़क अवरुद्ध होने जैसी घटनाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश के स्कूलों के लिए स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और व्यवस्थित प्रतिक्रिया देना है। SIHFW परिवहन शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और UNDP परियोजना के तहत स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान विकसित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है। एशियन विकास बैंक की 1300 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना में प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए क्लस्टर गठन के लिए 60 बीघा भूमि की अनिवार्य शर्त समाप्त कर दी है। इस फैसले से अब छोटे और सीमांत किसान भी परियोजना का लाभ उठाकर आधुनिक बागवानी से जुड़ सकेंगे और उनकी आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 3000 हेक्टेयर नए क्षेत्र का विस्तार कर उच्च दाम वाले फलों का महत्व दिया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण में ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, मैकाडामिया नट और कीवी जैसे उच्च मूल्य वाली फलदार फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आम, संतरा, माल्टा सहित अन्य फलों के उच्च घनत्व वाले पौधे लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा। सत्र में 10 बैठकें होंगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की संस्तुति के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने बताया कि विधायी कार्यों की महत्ता को देखते हुए 22 अगस्त शनिवार को भी सदन की बैठक आयोजित की जाएगी। रक्षाबंधन और सप्ताहांत पर 28, 29 और 30 अगस्त को सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। सत्र के दौरान 27 अगस्त को दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस प्राइवेट मेंबर्स डे के लिए निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी खबर है। अब हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 14 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए EKYC और ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी श्रमिक ने समय रहते दोनों प्रक्रियाएं पूरी नहीं की तो वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी सरकार और बोर्ड द्वारा संचालित कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सही और पात्र श्रमिकों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से जल्द EKYC और ईश्रम पंजीकरण पूरा करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी ना आए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा चिकित्सा महाविद्यालय के फैकल्टी सदस्यों एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस संवाद सत्र में उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में उनसे विचार विमर्श भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में फैकल्टी को मजबूत करने के लिए नियमों में आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में नई एक्सरे मशीन, अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक उपकरण, सिटी स्कैन मशीन और एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त 3 Tesla MRI मशीन स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिकित्सा महाविद्यालय में 20 ICU बेड स्थापित करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक कार्यवाही समय पर शुरू
की जा सके। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता इस समय आपसे जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और मैं हूँ आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम सुनने वाले सभी छोटे बड़े श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। जी हाँ श्रोताओं, हमें पता है कि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, और संडे होता है खूब सारा फंडे, खूब मस्ती, खूब धमाल, खूब रेस्ट, खूब आराम और घूमना फिरना। हर कोई अपने अपने हिसाब से संडे को एंजॉय करता है। जी हाँ, हम सभी 6 दिन कामकाज करते हैं और 7वां दिन हमारा विश्राम दिन होता है। इस दिन सभी को छुट्टी होती है, सभी अपने अपने घरों पर होते हैं और अपनी जीवन शैली में व्यस्त होते हैं, अपने कामकाज में व्यस्त होते हैं। क्योंकि आजकल की बात की जाए श्रोताओं, तो हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है, और एक छुट्टी का दिन होता है तो हम अपने घर वालों को समय देते हैं, उनके साथ रहते हैं, सारा दिन खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, रिश्तेदारी देखते हैं, और भी ढेरों काम होते हैं संडे के दिन जो हमने पहले से ही प्लान कर रखे होते हैं कि संडे को ये काम करेंगे। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी के साथ भी इसी तरह से होता होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं जीवन में जो हम सभी एक जैसा ही सोचते हैं। तो खैर, मुझे तो इस समय सोचना पड़ रहा है कि मुझे अपने प्यारे से श्रोताओं को सुनवाना है गीत, और आपका सोचना ये होगा कि आपको सुनना है ये गीत। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए श्रोताओं, आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा पहला गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और इन्जॉय करते रहिए यहाँ से चलने वाले प्यारे प्यारे गीतों को।

जी हाँ श्रोताओ, बरसात का मौसम चिपचिपाहट वाला होता है। उस समय हमें थोड़ी सी हवा की ज़रूरत होती है। उस समय हम जल्दी से पंखे के नीचे बैठते हैं हवा लेने के लिए, और मन करता है कि हवा के नीचे बैठते रहें।

तो हवाओं को तो हमें रोकना ही है, क्योंकि बरसात की गर्मी कुछ चिपचिपाहट वाली होती है। उस समय मन करता है पंखे के नीचे, कूलर के नीचे बैठे रहें, कुछ समय के लिए गर्मी को शांत कर लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, मौसम के हिसाब से हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में मन करता है कि गर्म रजाई में डूब जाएं, और गर्मी में मन करता है कि पंखे की ठंडी हवा ली जाए। जी हाँ, मौसम का अपना अपना हिसाब होता है, और इन्हीं मौसम की बातों और यादों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताओं, कहते हैं दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, पर दोस्त तो हमेशा दिल के करीब रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। श्रोताओं, इन्हीं प्यारी सी पंक्तियों के साथ आप सभी को हैप्पी अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे। आज के दिन को हम सभी मित्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, और भाई रेडियो के जरिए तो हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बन चुके हैं, और हम भी अपनी दोस्ती को निभाने चले आते हैं हर दिन आपके साथ ढेर सारी बातें करने और जानकारियाँ साझी करने। तो आज भी हम खूब सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा और मजबूत सा रिश्ता जो आपके साथ बन चुका है। और श्रोता, वैसे भी कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर होता है, सब रिश्तों से मजबूत होता है। जहाँ घर पर या घर वालों से अपनी हम कोई बात नहीं कह सकते हैं, या थोड़ा सा हमें कहने में झिझक महसूस होती है, वो बात हम दोस्ती में अपने दोस्तों से कह देते हैं। और दोस्त अच्छे हों तो वो हमें सही राह दिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, दोस्ती ऐसी हमारी अच्छी प्यारी मजबूत होनी चाहिए, और ज़िंदगी के सफ़र में अच्छे दोस्त भी ज़रूर बनाने चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अच्छी राह हमें दिखा सके। तो श्रोताओ, दोस्ती की जानकारी और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसे भी आपके साथ साझा करेंगे। और

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर श्रोताओं हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है, और एक बार फिर से सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। जी हाँ श्रोताओं, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत सारा प्यार आज श्रोताओं के प्रति झलक भी रहा है, और क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा है, प्यारा है, मजबूत है, और हर रिश्ते को नाम मिला है दोस्ती का। दोस्ती दो या दो से अधिक लोगों के बीच में भी होती है, और ये बड़ा ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, जो विश्वास बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और आपसी सहयोग पर आधारित होता है। ये खून के रिश्ते से भी बढ़कर माना जाता है, जिसमें सुख दुख मिलकर बांटे जाते हैं और साझा किए जाते हैं। तो कुछ प्यारे से गीत हम भी अपने श्रोताओं तक साझा करते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो श्रोताओं आप जुड़े रहिए रेडियो मंचन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं और श्रोताओं कहते हैं, बिगड़ी हुई जिंदगी की उम्मीद है दोस्ती, हार कर भी ना माने तो जिद है दोस्ती। जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, दोस्ती बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी होती है। और श्रोताओं, दोस्ती की कुछ और थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। सच्ची दोस्ती में कोई मतलब या शर्त नहीं होती है। सच्चा दोस्त वह होता है जो हर कठिन समय में हाथ थाम कर खड़ा रहे। दोस्त अपनी गलतियों पर आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और इस तरह के दोस्त मैंने हमने पहले भी आपसे बात की कि ज़रूर अपनी ज़िंदगी में होने चाहिए, जिससे हम अपना दुख सुख शेयर कर सकें। तो दुख सुख थोड़ा सा हमें भी अपने दोस्तों के साथ करना होता है, थोड़ी सी मस्ती करनी होती है, थोड़ी सी धमाल करनी होती है, थोड़ा सा करना होता है मनोरंजन। तो आइए थोड़ा सा रुक करते हैं मनोरंजन की ओर।

तो इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं कार्यक्रम में, और साथ ही साथ श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत हम फिर से दोस्ती की बातचीत पर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दोस्त कोई पुराना नहीं होता। जी हाँ श्रोताओं, दोस्त कोई पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात ना करने पर बेगाना भी नहीं होता है। तो श्रोताओं मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए, क्योंकि दोस्ती जो है हर समय बहुत काम आती है। जब भी कोई हमें परेशानी होती है, फटाफट से हम फ़ोन लगा देते हैं अपने दोस्तों को बातचीत करने के लिए, और बातचीत करके श्रोताओं क्या होता है, हमारे दिल का बोझ भी कम हो जाता है और थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ी सी राहत मिलती है। और दोस्ती में बहुत सारे रंग होते हैं श्रोताओं। कभी टांग खींचते हैं हम एक दूसरे की, तो कभी आखिर तक साथ भी देते हैं। कभी खट्टी मीठी नमकीन बातें होती हैं, तो कभी सतरंगी रंगों से सजी दुनिया की बातें होती हैं। हर दोस्ती अपने आप में अलग अनूठी पहचान लिए होती है श्रोताओं। और साथ ही साथ जो है दोस्ती के रंग जो कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। हर जगह दोस्त मिलते हैं हमें, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर हम कार्यालय में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ हमें दोस्त मिलते हैं। और दोस्त जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हम अपने कामकाज से फ्री होते हैं तो अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, खाते पीते साथ हैं, रहते साथ हैं, घूमते साथ हैं, और भी कई सारी बातें हमारी होती हैं। और अपनी जो दोस्ती होती है इसी तरह से आगे बढ़ती रहे तो अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार के बाद जो है दोस्ती में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं या बहुत सारे काम होते हैं जो हम दोस्तों के साथ रहकर करते हैं। समाज में हमें परिवार तो मिलता ही है श्रोताओं, परिवार के साथ साथ दोस्त मिलते हैं। दोस्तों के साथ हम घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, या फिर करते हैं मौज मस्ती, और भी कई सारे काम होते हैं जो दोस्तों के जरिए हम कर लेते हैं। जब हमें कोई साथ नहीं मिलता है तो दोस्तों को हम जल्दी से फ़ोन करते हैं कि हमें इधर जाना है, उधर जाना है, और इस तरह से जो है दोस्त पर हम निर्भर रहते हैं, और निर्भर होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त बहुत काम आते हैं। सही राह तो दिखाते ही हैं, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र तय करने में भी हमारा साथ देते हैं। और कहीं कोई अच्छा फैसला लेना हो तभी दोस्तों का साथ हमारे साथ रहता है श्रोताओं। तो इसी तरह अपनी दोस्ती को थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

हाँ, ईश्वर तो दोस्ती में दम होना चाहिए, तभी दोस्ती जो है निभती है। और हम कार्यक्रम में दोस्ती से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपके साथ साझा कर रहे थे। तो श्रोताओं, अगर हम कार्यालय की बात करें तो कार्यालय में भी, कामकाज पर भी हमें बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। और काम किसी भी तरह का हो, चाहे मजदूरी का हो, चाहे कोई दुकान का हो, बहुत सारे दोस्त हमें इधर उधर मिल ही जाते हैं। और अगर कार्यालय की बात करें तो ढेर सारी फाइलों और टारगेट का दबाव हो, तब भी दोस्त हमारी जो है हेल्प करते हैं। अच्छे दोस्त जो है ये देखते हैं कि हमारे दोस्त पर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो जल्दी से आ जाते हैं हमारी सहायता के लिए। वैसे भी अगर अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बनना है तो हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, फिर चाहे दोस्त हो या फिर हो पारिवारिक रिश्ते। और कई बार क्या होता है कि घर पर भी बहुत सारी शिकवे शिकायतें होती हैं और हमारे दिल पर रह जाती हैं, और इन्हीं शिकवे शिकायतों का बोझ हमारे मन पर होता है, तो उसे कम करने के लिए हम दोस्ती में जाकर उन बातों को थोड़ा सा साझा करते हैं, ताकि हमारे मन का बोझ हल्का हो जाए। बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों दोस्ती में, जिन्हें हम अपने दोस्तों के साथ करके बड़ा सुकून अनुभव करते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम के समय मन करता है कि अरे अपने दोस्त को फ़ोन कर लिया जाए, अपनी सहेली को फ़ोन कर लिया जाए, या फिर कुछ पल के लिए उसके पास बैठकर बातचीत कर ली जाए। तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी राहत मन को मिलती है। जी हाँ, थोड़ा सा सुकून और राहत गीत के जरिए हम भी पा लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं, और कार्यक्रम में वापस आने के बाद कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं श्रोताओ। विद्युत उपमंडल धर्मशाला नंबर 2 के सहायक अभियंता रमन भरमोरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि 100 KVA मनेड़ 1 तथा 100 KVA अपर बगली के तहत मनेड़, खतेड़, अपर बगली तथा अन्य साथ लगते क्षेत्रों में 3 अगस्त सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। तो श्रोताओ, ये थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम की इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जानकारियां हमारे पास बहुत सारी हैं जो हमें अपने श्रोताओं तक साझी करनी है। तो जानकारियों का पिटारा भरा हुआ है, उसे थोड़ा सा फिर से खंगाल लेते हैं। और दोस्ती की बात श्रोताओं हम कर रहे थे, तो दोस्ती आजकल सोशल मीडिया की भी होती है और हम सभी इससे भली भांति परिचित है। श्रोताओं, तकनीक के दौर पर सवार दोस्ती ने मीलों की दूरियों को पटाया है, और कब के बिछड़े हुए दोस्त रिश्तेदार जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है हमें मिल ही जाते हैं। कई सदियों से जिन्हें हम जानते भी नहीं थे या भूल चुके थे, हमारी यादों से निकल चुके थे, वो भी हमें सोशल मीडिया के जरिए मिलते ही हैं। SMS और मिस कॉल से भी दोस्ती को आगे बढ़ाया जा सकता है। आजकल के समय में आपने देखा ही होगा कि कहीं पर अगर हमारी मिस कॉल लग जाती है तो आगे से जवाब यही आता है कि इस तरह की मिस कॉल बार बार लगनी चाहिए। तो श्रोताओं, थोड़ा सा दोस्त चुनने में थोड़ी समझदारी बरतें। अगर आपको लग रहा है कि दोस्त अच्छा है तो दोस्त ज़रूर बनाएं, और अगर नहीं लग रहा है तो छोड़कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जो चीज़ हमें परेशानी देती है, टेंशन देती है, उसे छोड़कर आगे निकल जाना ही बेहतर होता है। और आजकल की हम श्रोताओं बात करें तो आजकल फेसबुक, ट्विटर, ईमेल पर हमें बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। और फ्रेंड रिक्वेस्ट की बात करें श्रोताओं, तो 75 साल के बुज़ुर्ग भी कई बार 17 साल के बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, और कहते हैं कि बड़ों के साथ अगर हम दोस्ती करें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत फ़ायदा उसमें रहता है। पर शर्त यही है कि अगर बुज़ुर्ग भी हैं तो दोस्त हमारे अच्छे होने चाहिए। श्रोताओं, थोड़े सोशल मीडिया से अलग हटकर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि बुज़ुर्गों से की हुई दोस्ती बहुत फ़ायदे की रहती है। ज़िंदगी का तजुर्बा हमें देते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें सिखाते हैं, बहुत सारी कहानियां सिखाते हैं, और ऐसी बातें हमें बता देते हैं ज़िंदगी भर हमारे काम आती है। तो श्रोताओं, कहते हैं अपने से बड़ों की दोस्ती की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहती है। तो हमारे साथ तो बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और हम उम्र भी हैं, तो हम उम्र से भी सीखा जा सकता है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार क्या होता है श्रोताओं, हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, और सीख कर वो चीज़ हमारे काम ही आती है। तो सीखते जाइए और ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते जाइए। फिलहाल इस समय हमें भी आगे बढ़ना है और आप तक पहुंचाने हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोध इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो कार्यक्रम में फिर से हम थोड़ी सी जानकारियां और आपके साथ साझा कर लेते हैं दोस्ती के ऊपर। स्कूल और कॉलेज की दोस्ती की श्रोताओं बात करें तो कॉपी किताबों में रंग बिरंगी विद्या की पत्तियाँ और पेंसिल को छीलने से लेकर स्टिकर, कैंटीन की चाय, समोसे, आधी रात को की गई फ़ोन कॉल, उसमें नोट्स का जुगाड़ और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम किया करते थे। होमवर्क की बातें, यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरी सखी है, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती है, मुझे होमवर्क नहीं दे सकती है, तो ये सब दोस्ती में ही होता था श्रोताओ। और दोस्ती में हम फटाफट से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते थे। कभी कपड़ों की बात करें तो टी शर्ट से लेकर जूते, दुपट्टे और चॉकलेट तक के आटे बाटे हम अपने दोस्तों के साथ किया करते थे। आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम अपने दोस्तों से ये चीज़ें मांगा करते थे, यार एक दिन के लिए दे दो मुझे ये चीज़, फिर मैं वापस कर दूंगा या कर दूंगी। तो इस तरह से दोस्ती के बीच में चलता ही रहता था और बहुत सारी मस्ती होती थी, बहुत सारी धमाल होती थी, तो इस तरह से हमारी दोस्ती जो है मजबूत भी बनी रहती थी। तो आइए थोड़ा सा फिर से हम कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के सभी तरह से

0: श्रोताओ, इसी प्यारे से गीत के साथ साय के 7 बज चुके हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे

0: स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी, नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने दोस्त आरसी सुमन के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की, यानी आज के स्पेशल डे के बारे में। पहले तो हमने बात की मित्रता दिवस के बारे में, अब थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और आज एक और ख़ास दिन है, वो है सिस्टर डे। तो रेडियो गुंजन के माध्यम से भी हमें बहुत सारी जो है सखियां भी मिली हैं और बहनें भी मिली हैं। तो श्रोताओं, बहनें भी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी राय देती हैं और हमारे दुख सुख की साथी भी होती हैं। कहते हैं, मेरी हर गलती को जो प्यार से छुपा ले और माँ की तरह ख्याल रखे, ऐसी दुनिया की सबसे प्यारी बहन को सिस्टर डे का दिल से सलाम। तो हमारी जो भी बहनें इस समय हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं और हमें अपनी बहन मानती भी हैं, उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हैप्पी सिस्टर डे। और इसी सिस्टर डे में हम आगे

करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हमें बातचीत सिस्टर दिवस की भी करनी है। तो कहते हैं बहन दिवस हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को दोस्तों मनाया जाता है, जो बहनों के अनमोल प्यार और रिश्ते और उनके बीच के यानी हमारे बीच के गहरे बंधन को समर्पित है। जी हाँ, सिस्टर डे की हम बात कर रहे हैं। तो अमेरिका में टेनेसी राज्य के मेमिफिस शहर की निवासी ट्रिशिया एलेग्राम द्वारा बहनों के रिश्ते को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और श्रोताओ, आज के दिन के महत्व की बात करें तो जैविक बहनों के अलावा गोद ली हुई या चुनी हुई खास महिलाओं, मित्रों, जिनका रिश्ता बहन जैसा हो, के प्रति आभार जताने का अवसर होता है। तो इस दिन हम अपनी बहनों को उपहार भी दे सकते हैं। जैसे ग्रीटिंग कार्ड का तो खैर अब ज़माना नहीं रहा है, लेकिन फ़ोन के ज़रिए हम बहुत अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी बातें उन्हें सेंड कर सकते हैं। चॉकलेट भी हम उन्हें दे सकते हैं, या पसंद की कोई वस्तु, गिफ्ट या भेंट हम अपनी बहनों को कर सकते हैं। समय बिताने की बात करें तो साथ में बाहर घूमने जाना या मिलकर कहीं खाना भी अपनी बहनों के साथ खाया जा सकता है, या जो हमारी शादीशुदा बहनें हैं उनसे हम उनके घर जाकर भी मिल सकते हैं। अगर नहीं जाया जाता है तो फ़ोन के ज़रिए भी हाल चाल पूछ कर उन्हें मुबारकबाद दी जा सकती है। पुरानी तस्वीरें देखना और बचपन की बातें साझा करना कितना अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है कि हम बचपन की फ़ोटो को, तस्वीरों को देखते हैं, निहारते हैं और खुश होते हैं कि अरे कितने छोटे थे, कैसे लगते थे हम। तो जो तस्वीरें होती हैं यह कहीं ना कहीं हमें अपनी पुरानी यादों में ले जाती हैं। और कहीं हम सीरियस बैठे हों तो फ़ोटो को देख कर, तस्वीर को देख कर अपने आप चेहरे पर हंसी भी आ जाती है। बिल्कुल श्रोताओ, इसी तरह से हम सभी के साथ होता है ना। तो ये दिन खासकर बहनों को समर्पित है। तो आइए कार्यक्रम में आपको बहनों से जुड़ा हुआ प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

जी हाँ, श्रोता, बड़े बहन भाई बहन जो होते हैं वो पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, माता पिता के जैसे ही होते हैं, और प्यार भी छोटे भाई बहनों को माता पिता जैसा ही देते हैं। बड़े भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है। इसमें नोक झोंक से भरे इस रिश्तों में तमाम खट्टे मीठे पल आते जाते रहते हैं, और समय के साथ इन पलों से यादों की एक ऐसी चेन बनती है जिसे जिनमें कभी हम हंसते हैं तो कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि खुशी कई बार आंसुओं के जरिए छलक भी जाती है। तो श्रोताओं, सिस्टर डे और नेशनल सिस्टर डे भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल अगस्त के पहले रविवार यानी आज के दिन हम मना रहे हैं। ये साल यानी कि 2021 से शुरू हुआ था और इसे आज तक हम मना रहे हैं। अगस्त का पहला रविवार त्योहारों और योजनाओं के मामले में भी साल में सबसे व्यस्त दिनों में से एक होता है, और भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे और जो बड़े भाई बहन होते हैं बच्चों के जैसे अपने दूसरे भाई बहन को पालते हैं, और कई बार उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि छोटे भाई बहन को पढ़ाना, उनकी शादियां करना और भी कई तरह की बातें जो हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को सिखाते हैं। तो श्रोताओं, देखिए, ये जो सिस्टर डे होता है ये भी बहुत प्यारा दिन होता है, और खैर आज हमारे भाई नाराज़ ना हों क्योंकि भाइयों का दिन भी आता है। खैर, सबके अपने अपने दिन होते हैं, तो आज हम जो बात है ख़ास तौर पर अपनी बहनों के लिए कर रहे हैं, शिक्षक दिवस की कर रहे हैं। तो बहनों को आज सम्मान और प्यार देने का दिन है, और किसी भी तरह से हम उन्हें याद कर सकते हैं। हम तो यू ही चाहते हैं कि हमारा रेडियो वाली बहनों के साथ जो श्रोता बहनें हैं उनके साथ भी यूं ही प्यार बना रहे, और जो हमारी रेडियो वाली बहनें हैं उनकी आगे जो बहनें हैं उनका भी उसी तरह से प्यार बना रहे। ये प्यार के जरिए ही दुनिया टिकी हुई है, और ज़िंदगी में प्यार जितना हो तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लगती है। तो इसी कार्यक्रम को भी थोड़ा सा खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं, और कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं लेकर कुछ स्थानीय जानकारियां। तो आइए आपके साथ इन्हें साझा करते हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र प्रमुख आधार स्तंभ है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और बागवानों द्वारा प्रगतिशील विकास कार्यक्रमों को अपनाने से पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य सरकार के वैज्ञानिक पद्धतियों आधुनिक बुनियादी ढांचे जलवायु अनुकूल तकनीकों और बेहतर मार्केट पहुंचने के जरिए बागवानी क्षेत्रों को सुदृढ़ करने और बागवानी क्षेत्रों के साथ साथ पिछले 3 वर्षों से बागवानी विभाग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने उत्पादक में सुधार और राज्य में सतत बागवानी पद्धतियों के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई मुख्य कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। तो श्रोताओ ये तो थी हमारी जानकारियां। अपनी जानकारियों को यहां पर देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो।

परदेसी हो गए छोटा अपना देश हम परदेसी।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, तो कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, हम बहनों की बात कार्यक्रम में कर रहे थे। बड़ा प्यारा सा, बड़ा मजबूत सा रिश्ता हमारी बहनों का हमारे साथ होता है। बहनें हमारे बचपन की खूबसूरत और खुशनुमा बना देती हैं। बहनों के साथ हमारा अटूट बंधन होता है। और भाई बहन की बात करें तो थोड़ा सा भाई और बहनों का प्यार भी बहुत अच्छा सा होता है। बचपन की यादें और भी मज़ेदार पल होती हैं। घर वापस जाना, माता पिता के अलावा किसी और के साथ कुछ बातें साझा हो ना हो, लेकिन भाई बहनों के साथ या बहनों बहनों की बात ज़रूर एक दूसरे के साथ साझा होती थी। बहनें सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त होती हैं, और साथ ही साथ जो है बहनों का रिश्ता भी अच्छा और प्यारा मजबूत होता है। बहुत खुशी मिलती है अपनी बहनों से मिलकर, साथ घूमना, साथ बाहर जाना, साथ स्कूल जाना, साथ खाना, और लड़ाई भी खूब सारी होती थी। पहले के समय की बात करें तो पहले तो इतना लड़ा करते थे श्रोताओ, हमारे जो श्रोता हम उम्र इस समय हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो एक दूसरे के बाल तक नोच दिया करते थे। इतनी गहरी और लड़ाई हमारी हुआ करती थी, और बातों बातों से कहीं ना कहीं हमारा भी ध्यान उस तरफ चला गया। होता है जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो पिछली सारी बातें रिमाइंड हो जाती हैं, तो बहनों में बहुत सारी लड़ाई होती थी और कुछ पल के बाद ही फिर से हंसना, मुस्कुराना, खाना पीना और वही प्यार फिर से उमड़ जाता था। यह बोल कर कि अरे तू तो मेरी बहन है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा हम की बात ही ना करें, बात तो होनी ही चाहिए, और फिर से हम अपनी बहनों को मना लिया करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इसी तरह से हमारा रिश्ता होना चाहिए कि कुछ पल लड़ने के बाद उस बात को खींचने की बजाय जल्दी से अपनी जो रिश्ता है उनको बचा लेना चाहिए और फिर से आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ, बहनों के प्यार के साथ थोड़ा सा फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहन और भाई का रिश्ता इस दुनिया का सबसे अनोखा और खूबसूरत रिश्ता होता है। बहनें हमारे लिए सिर्फ बहन नहीं बल्कि सबसे अच्छी दोस्त, सलाहकार और दुनिया में मुश्किलों से बचाने की ढाल बनकर खड़े होने वाली ताकत होती है। चाहे बचपन की वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हों या बड़े होने पर एक दूसरे को बिना कहे समझ लेना, बहन का साथ जीवन के हर सफर को आसान बना देता है। श्रोताओ, सिस्टर डे का खास दिन हमें अपनी प्यारी बहन को ये एहसास कराने का मौका देता है कि हमारे जीवन में उसका होना कितना मायने रखता है। जी हाँ श्रोताओ, बहन है तो जीवन में खुशियाँ हैं और हमें एक ताकत मिलती है कि हमारे सर पर कोई है, सलाहकार बैठा है। पेरेंट्स के बाद भाई बहन ही होते हैं जो बड़ों का प्यार देते हैं, और हम हर बात हर सलाह उन उनसे लेते हैं और अपने कामकाज करते हैं। तो थोड़ा सा कार्यक्रम में फिर से लेते हैं विराम और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इसी भाई बहन के प्यार के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जिंदगी के हर तूफानों में जिसने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा उस अनमोल तोहफे यानी मेरी बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहनों का साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे, हर पल हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत यादें जो हैं इन्हें हम संजो कर रखें, क्योंकि बहुत सारे पल हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं। कभी अकेले में बैठे हों तो उन्हें याद करते हैं और मुस्कुराते भी हैं। और इसी तरह से हमारा प्यार बना रहे, इसी प्यार को और मजबूत करते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

0: तो इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया 7:45। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं शिमला।
1: विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में करीब 333 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, मॉनसून सत्र में जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी भाजपा। और चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। वे आज नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के शुभारंभ पर वर्चुअल माध्यम से बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
2: मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और

0: ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर के 28,000 स्थानों पर 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा विधानसभा क्षेत्र में करीब 333 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों का जाल बिछाने का कार्य जारी है और अगले 3 माह के भीतर 591 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न सड़कों का कार्य शुरू किया जाएगा।
2: 591 करोड़ रुपए की सड़कों का कार्य अगले 2-3 महीनों में शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैं चंबे के विधानसभा क्षेत्र के दौरे में आया हूँ। यहाँ 175 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है और यहाँ अभी 32 करोड़ की लागत से जो पार्किंग का भी शिलान्यास हुआ है। जहाँ विकास की बात है, पैसे की कोई कमी नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में है।
1: बाद में चंबा मेडिकल कॉलेज में एक संवाद सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने पर विचार कर रही है और इस संबंध में एक नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज में 3 टेस्ला MRI मशीन जल्द स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के हरोली में प्रदेश के पहले ई बस डिपो का लोकार्पण किया। उन्होंने पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हरोली में स्थापित ई बस डिपो से 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा और पूरे ऊना जिले में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अग्निहोत्री ने बताया कि ठियोग, नाहन और नादौन में भी ई बस डिपो स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा के आग्रह पर कांगड़ा में भी ई बस डिपो स्थापित करने की घोषणा की। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। लोकभवन शिमला में एक समारोह में उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान में भले ही उल्लेखनीय प्रगति की हो, लेकिन आज भी मानव रक्त का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। राज्यपाल ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों और अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने मौजूद लोगों को नशा मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई। राज्यपाल ने युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा रक्तदान शिविरों के आयोजन में निभाई जा रही भूमिका की सराहना भी की। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि वन महोत्सव अभियान पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। सोलन जिले में कंडाघाट उपमंडल के ममलीग में आज वन महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के करीब 450 पौधे रोपे गए। शांडिल ने वशील में जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश भी दिए। बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किन्नौर जिले के ग्याबुंग में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में आधुनिक बागवानी तकनीकों व गुणवत्तापूर्ण किस्मों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ताकि बाजार में उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि 21 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में भ्रष्टाचार, नशे के बढ़ते प्रचलन, कानून व्यवस्था, सड़कों व स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली सहित अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
3: हमारी विधायक दल की बैठक बहुत जल्दी होगी और विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में पूरे जोर के साथ विपक्ष जो है जनहित के मुद्दों को उठाएगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे और हिमाचल प्रदेश में नशा और जिस तरह से उसका प्रचलन बढ़ा है और जो खासतौर से ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे।
1: इस बीच एक बयान में जयराम ठाकुर ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को किताबें ना मिलने पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा CBSE स्कूलों में अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है क्योंकि इसके लिए नियम व शर्तें तय नहीं हो पाए हैं। चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर चंबा शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुख्यमंत्री ने मंजरी वन विहार से रावी नदी में हाथ से बनाई गई मिंजर का विसर्जन कर मेले का समापन किया। उन्होंने कहा कि मेले हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं और चंबा का मिंजर मेला अपनी प्राचीन संस्कृति को राजकाल से ही सहेजे हुए है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व विधायक नीरज नैयर भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन मेडिकल कॉलेज में कई स्वास्थ्य सेवाओं के बंद होने पर चिंता जताई है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में CT स्कैन व अल्ट्रासाउंड जैसी कई सेवाएं बंद है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से अस्पताल में कई ऑपरेशन थिएटर भी बंद पड़े हुए हैं।
4: स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी गिरावट हमारे नाहन के मेडिकल कॉलेज में आई। आज ऐसी गंभीर स्थिति में पहुंचे हैं कि CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक उसका काम बंद हो और बंद होने के पीछे चिकित्सकों का ना होना ये बताया। बहुत चिंता का विषय है। सिरमौर जिला का एकमात्र चिकित्सा का संस्थान, वहां पर ऐसी स्थिति हुई।
1: सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के संतोषगढ़ में आज स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रव्यापी मैं भी स्वदेशी समर्थक महाअभियान की डिजिटल शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है और भारतीय उत्पादों, स्थानीय उद्यमों, स्टार्टअप्स, कारीगरों व लघु उद्योगों को बढ़ावा देना समय की मांग है। अनुराग ठाकुर ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने का भी आह्वान किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार गुमारवी विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को आधुनिक, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गुमारवी क्षेत्र में अगले 6 माह में 60 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 55 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी किया जाएगा। सतलुज जल विद्युत के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक स्वर्गीय नंदलाल शर्मा की स्मृति में आज पंचकुला में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल सहित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व अन्य नेताओं के शोक संदेश पढ़े गए। सभी ने दिवंगत नंदलाल शर्मा को एक दूरदर्शी प्रशासक और एक कुशल प्रबंधक बताया। और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कल कांगड़ा, चंबा और बिलासपुर जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में करीब 333 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा मॉनसून सत्र में जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी भाजपा। और चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: समाचारों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचे हैं, तो आइए चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

शोध आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ की ढेर सारी बातें, उम्मीद है आपको पसंद भी आई। इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर से मिलेंगे नई बातों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना। इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं क्या इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।

0: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
1: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
2: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
3: बेबी, ये पर्स है 30,000 rupees का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
4: ओह नो,
5: 30,000 का?
3: हाँ
5: ले दो।
3: सच्ची?
5: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
3: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
5: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
3: बेबी पागल हो गया, यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
5: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
3: Ha ha ha!

नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। अगले हफ्ते से बनेंगे हिमबस प्लस कार्ड HRTC की बसों में यात्री बढ़ाने में साबित होगा गेम चेंजर। बिना टिकट यात्रा पर ₹500 जुर्माना, परिवहन निगम ने जारी की नई SOP, पुराने आदेश निरस्त। देश के दूसरे ब्रिज रेलवे की ऊंचाई पर टिका एयरपोर्ट का विस्तार। स्कूलों में बनेगा आपदा प्रबंधन प्लान, बाढ़ से सुरक्षा पर जोर। छोटे किसानों को भी मिलेगा HP शिवा परियोजना का लाभ।

क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। अस्पताल में ब्लॉक ए, बी तथा सी के माध्यम से रोगी उपचार एवं चिकित्सा शिक्षा की समग्र सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इस अस्पताल में 8 प्रमुख विशेषज्ञ जिनमें मेडिसिन, शिशु रोग, मनोरोग, चेस्ट एवं क्षय रोग, टीवी, शल्य चिकित्सा, ईएनटी, प्रसूति एवं स्त्रुति रोग तथा दंत चिकित्सा की ओपीडी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त अस्पताल में आधुनिक आपातकालीन सेवाएं, रेडियोलॉजी विभाग, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर परिसर सहित 200 इंडोर बिस्तरों के माध्यम से अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। मनोरोग गायनोकोलॉजी विभाग तथा त्वचा रोग विभागों की सेवाएं मरीजों को मिलनी प्रारंभ हो गई हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में अब सभी कार्डों को मर्ज कर अब ही नया हिमवस प्लस कार्ड बनाया जाएगा। अब तक बनाए गए सभी पुराने कार्ड अब एक ही कार्ड में मर्ज किए जाएंगे। इस कार्ड को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गत सोमवार को लॉन्च किया है। ये नया कार्ड अब निगम के लिए गेम चेंजर कार्ड साबित होगा। निगम की बसों में यात्रियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए ये डिजिटल प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके लिए अगले सप्ताह से कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बस कार्ड का लाभ ये होगा कि ये बाहरी राज्यों पंजाब हरियाणा की बसों में के अलावा दिल्ली मेट्रो में चल सकेगा। यात्रियों को स्मार्ट और डिजिटल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्ड लाया गया है, जिसके लिए प्रतिदिन का 1 रुपए चार्ज यात्रियों को देना होगा। एक वर्ष में इस कार्ड का 365 रुपए खर्च होगा। हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने टिकट रहित यात्रा और टिकटिंग में अनियमितताओं लगाम लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया पर SOP तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। इसके साथ ही टिकट रहित यात्रा से जुड़े सभी पुराने कार्यालय आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। नई SOP में नियमित और संविदा कंडक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, यात्रियों पर जुर्माना, बच्चों के टिकट, EVDM मशीन के उपयोग और शिकायत करने वाले यात्रियों को पुरस्कार देने तक के विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। नई SOP के अनुसार बिना वैध टिकट यात्रा करना टिकट रहित यात्रा माना जाएगा। यदि कंडक्टर किराया वसूल कर टिकट जारी नहीं करते हैं, कम किराए का टिकट देते हैं, तो इसे गंभीर अनियमितता माना जाएगा। यात्री पर भी 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार ने अब एक अहम तकनीक पड़ाव पार कर लिया है। यहां देश का दूसरा ब्रिज रनवे यानी पुल पर हवाई पट्टी मानसी खड्ड के ऊपर प्रस्तावित है, जिसके लंबाई और चौड़ाई का खाका लगभग तैयार हो चुका है। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पुल की ऊंचाई पर फैसला होना बाकी है। ऊंचाई पर अंतिम मुहर लगते ही एयरपोर्ट विस्तार का अगला चरण पूरी रफ्तार से शुरू हो सकता है, जिससे हिमाचल प्रदेश में बड़े विमानों के उतरने का सपना जल्द साकार होगा। मानसून के दौरान प्रदेश में भूस्खलन, बादल फटना, अचानक बाढ़ और सड़क अवरुद्ध होने जैसी घटनाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश के स्कूलों के लिए स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और व्यवस्थित प्रतिक्रिया देना है। SIHFW परिवहन शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और UNDP परियोजना के तहत स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान विकसित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है। एशियन विकास बैंक के 1300 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना में प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए क्लस्टर गठन के लिए 60 बीघा भूमि की अनिवार्य शर्त समाप्त कर दी है। इस फैसले से अब छोटे और सीमांत किसान भी परियोजना का लाभ उठाकर आधुनिक बागवानी से जुड़ सकेंगे और उनकी आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 3000 हेक्टेयर नए क्षेत्र का विस्तार कर उच्च दाम वाले फलों का महत्व दिया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण में ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, मैकाडामिया नट और कीवी जैसे उच्च मूल्य वाली फलदार फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आम, संतरा, माल्टा सहित अन्य फलों के उच्च घनत्व वाले पौधे लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा। सत्र में 10 बैठकें होंगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की संस्तुति के बाद
विधानसभा सचिवालय

अधिसूचना जारी की है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने बताया कि विधायी कार्यों की महत्ता को देखते हुए 22 अगस्त शनिवार को भी सदन की बैठक आयोजित की जाएगी। रक्षाबंधन और सप्ताहांत पर 28, 29 और 30 अगस्त को सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। सत्र के दौरान 27 अगस्त को दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस प्राइवेट मेंबर्स डे के लिए निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी खबर है। अब हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 14 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए EKYC और ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी श्रमिक ने समय रहते दोनों प्रक्रियाएं पूरी नहीं की तो वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी सरकार और बोर्ड द्वारा संचालित कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सही और पात्र श्रमिकों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से जल्द EKYC और ईश्रम पंजीकरण पूरा करने की अपील की है ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न आए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा चिकित्सा महाविद्यालय के फैकल्टी सदस्यों एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस संवाद सत्र में उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में उनसे विचार विमर्श भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में फैकल्टी को मजबूत करने के लिए नियमों में आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में नई एक्सरे मशीन, अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक उपकरण, सिटी स्कैन मशीन और एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त 3 टेस्ला MRI मशीन स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिकित्सा महाविद्यालय में 20 ICU बेड स्थापित करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक कार्यवाही समय पर शुरू की जा सके। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तो चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या, यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

रोकती है मेरी राहें, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे मैं

ये इशारे ये अदाएं मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे जिसे चाहे।

सी बाहें हाय हाय ये निगाहें हाय हाय हाय ये निगाहें अरे कर दे शराबी जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें अरे कर दे

0: चले आते हैं
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा।
2: गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।